0: डॉक्टर साहब, गाने के बाद हमारे श्रोताओं को बताइए, बीच में पेट के अल्सर का भी जिक्र किया था, और पेट के अल्सर की हालांकि अब तो लोग डॉक्टर्स कहते हैं कि बहुत आसान है इलाज, लेकिन जिस मरीज को होता है वो बहुत जल्दी घबरा जाता है, तो क्या अल्सर का इलाज दवाइयों से भी संभव है या ऑपरेशन करना ज़रूरी होता है?
1: नहीं, आज के ज़माने में तो हम अल्सर का ऑपरेशन करते ही नहीं है, क्योंकि अभी इतनी बढ़िया दवाइयां निकल रही हैं जो अल्सर की ट्रीटमेंट टैबलेट से हो जाती है। पर क्वेश्चन है कि अल्सर क्यों हो रहे हैं? अगर आज के जमाने में अल्सर हो तो हमको ढूंढना चाहिए क्यों होते हैं अल्सर। ज्यादातर अल्सर होते हैं जब हम पेन किलर्स बहुत खा लें, जैसे कभी जोड़ों का दर्द हो गया, हेडेक हो गया, तो लोग पेन के दवाइयां लेते रहते हैं, तो पेन मेडिसिन से अल्सर होने की संभावना बहुत हाई रहती है। स्ट्रेस से भी अल्सर हो सकता है, उसको स्ट्रेस अल्सर्स बोलते हैं। एसिडिटी से भी अल्सर हो सकता है, और रेयरली पेट का अल्सर एक साइन ऑफ कैंसर भी हो सकता है। द रीज़न हम अभी आजकल सर्जरीज नहीं कर रहे, क्योंकि जो एसिडिटी की दवाइयां हैं वो अगर आप खाओ तो मोस्ट अल्सर्स 6 से 8 हफ्ते के अंदर मिट जाते हैं। तो पुराने ज़माने में ये दवाइयां नहीं होती थी, तो अल्सर लोगों के चले रहते थे, जबकि फट जाए तो सर्जरी कराओ। आज के ज़माने में अल्सर की सर्जरी इज़ ऑलमोस्ट अनहर्ड ऑफ, दवाइयों से 6 से 8 हफ्ते में मोस्ट अल्सर्स ठीक हो जाते हैं।
0: जी जी, तो ये बहुत सही बात आपने बताई है, लेकिन अल्सर की पहचान कैसे करें, मतलब मरीज को कैसे पता चले कि उसे अल्सर है, क्या सिम्टम होते हैं खासतौर से?
1: नॉर्मली अल्सर में आपको पेट में, जहाँ पेट शुरू होता है, छाती के जस्ट नीचे बीच में सेंटर में पेन होगा। कभी कभी ये पेन खाने के बाद हो सकता है, कभी कभी ये पेन खाने से पहले हो सकता है, कभी कभी पेशेंट को वॉमिटिंग होती है और वॉमिटिंग में ब्लड भी आ सकता है।
0: जी जी,
1: कभी कभी ये ब्लीडिंग मोशन में भी हो सकती है, काला कलर का अगर मोशन हो गया मतलब पेट में अल्सर की ब्लीडिंग हो रही है, तो ये संभावना हो सकती है। अगर आपको ब्लीडिंग हो जाए, वॉमिटिंग हो जाए ब्लड की, पेट में दर्द हो जो खाने के बाद या खाने के पहले हो, दैट टेल्स यू कि आपके पेट में अल्सर होने की संभावना काफी हाई है।
0: जी, और एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे श्रोताओं की ओर से भी सवाल है, ये नींद और पेट की बीमारियों का क्या संबंध है, कि बहुत कम नींद लेके आजकल लोग काम करते हैं बहुत टेंशन में, तनाव में, तो उसका क्या असर पेट पर पड़ता है?
1: हाँ बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर हम ठीक से सोए ना, अगर हमारी नींद पूरी ना हो तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा खराब हो जाता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक क्लॉक पे काम करता है, सुबह उठते हैं, मोशन होता है और फिर पेट खाली होता है, पूरे दिन हम खाना खाते हैं, अगले दिन फिर से सोते हैं, हमारी साइकिल रीसेट होती है, अगेन नेक्स्ट डे मोशन होता है। चूँकि स्लीप साइकिल खराब हो या लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, ये स्लीप पैटर्न खराब हो जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो हम देखते हैं आजकल के युवाओं में, जो लेट नाइट बैठे रहते हैं, जंक फूड खाते हैं, फाइबर कम खाते हैं, कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं स्लीप डिप्राइव्ड पेशेंट को, जब स्लीप पैटर्न ठीक ना हो। अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए, तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज़्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो स्लीप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप दर्शक देख नहीं रहे कि मेरे हाथ में एक रिंग पहनी हुई है मैंने, ये मेरी स्लीप रिंग है, ये मुझे कहती है कि मैं कितना सोया हूँ कल रात को, ठीक से सोया हूँ कि नहीं। अगर मेरी नींद पूरी नहीं हुई है तो ये मुझे कहेगी कि मैं नेक्स्ट डे मुझे इतने बजे सोना है। अगर मैं इसको फॉलो करूँ अपने स्लीप पैटर्न को, तो मेरा पेट भी ठीक रहता है, एसिडिटी भी नहीं होती, वेट भी कंट्रोल में रहता है। अगर आप स्लीप पैटर्न को ठीक करें तो अपने वेट को भी कंट्रोल कर सकते हैं।
0: ओके, तो ये तो बहुत ज़रूरी बात आपने बताई है, क्योंकि आजकल तो सोने का किसी का समय फिक्स नहीं होता है, तो शिफ्ट ड्यूटी करने वाले लोगों को पेट की समस्या ज़्यादा होती है कुछ?
1: बिल्कुल, या एब्सोल्युटली बिल्कुल। हमारे ओपीडी में काफ़ी कंपनी के पेशेंट्स आते हैं जो अर्ली मॉर्निंग

0: शिफ्ट खत्म करके आते हैं हमारे पास देखने, और मोस्टली सबको इधर कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ रहती है या एसिडिटी की तकलीफ रहती है, एंड दिस इज रिलेटेड टू द शिफ्ट वर्क. तो आई थिंक शिफ्ट वर्क पेशेंट्स को डेफिनेटली ज्यादा प्रॉब्लम होती है.
1: जी, हमारे एक श्रोता की ओर से सवाल है कि ये गट फ्लोरा क्या होता है.
0: गट फ्लोरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो अभी लास्ट एटलीस्ट 10 साल से डिस्कवर हुई है. जो हमारा पेट इंटेस्टाइन होता है उसमें कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं. तो हम सिंपल टर्म्स में देयर इज गुड बैक्टीरिया एंड देयर इज बैड बैक्टीरिया. जो गुड बैक्टीरिया हो अगर ज्यादा हो तो डाइजेशन ईजी हो जाता है. गुड बैक्टीरिया ज्यादा हो तो ओवरऑल बॉडी का फंक्शनिंग बेटर होता है. तो बहुत बार अगर हमको लूज मोशन हो, हमने एंटीबायोटिक ले ली, तो हमारे गुड बैक्टीरिया मर जाते हैं. जब वो मर जाते हैं तो पेट के मसले और बढ़ जाते हैं. लूज मोशन ज्यादा होता है, पेट ठीक नहीं लगता, पेट का दर्द होता है. तो इसके लिए प्रोबायोटिक्स डेवलप हुई है गुड बैक्टीरिया जो हम देते हैं इंटेस्टाइन को, एंड इट हेल्प्स नॉट ओनली मेक द इंटेस्टाइन डाइजेस्ट फूड बेटर बट ऑल्सो इम्प्रूव इम्यूनिटी. बॉडी की इम्यूनिटी को भी ठीक करता है गुड बैक्टीरिया.
1: जी, तो उसके लिए जो प्रोबायोटिक दवाएं आती हैं वो लेना
0: तो मैं तो कहूंगा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट गुड बैक्टीरिया और गुड प्रोबायोटिक्स जो हमारे घर में है ना, फर्मेंटेड फूड्स और दही.
1: दही
0: से अच्छा कोई प्रोबायोटिक नहीं है. बट ऑब्वियसली अगर ये आप नहीं ले सकते, बहुत लोग दही नहीं खाते या फर्मेंटेड फूड्स नहीं टॉलरेट कर सकते, तो उनके लिए देयर इज गुड बैक्टीरिया अवेलेबल टू यू कैन टेक इट ऑलमोस्ट डेली.
1: जी, बहुत बढ़िया. यहाँ पर एक गाना सुनते हैं. डॉक्टर साहब बताइए कौन सा गाना सुनवाया.
0: तो ये एक बहुत पुराना सॉन्ग है, बहुत पुरानी मूवी कर्ज का, दर्दे दिल दर्दे जिगर. ये गाना
1: क्या बात है, आशिक बनाया आपने, बढ़िया गाना है, सुनते हैं ये गाना.

0: गाने के बाद डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं की ओर से एक सवाल है कि फैटी लिवर की समस्या है, इसे योगासन से क्या ठीक कर सकते हैं और एक्सरसाइज से दवाओं के साथ साथ कर सकते हैं क्या, किस तरह की एक्सरसाइज?
1: बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि अगेन पेशेंट जब हमारे पास आता है, दवाई नहीं देनी है हमने पहले एक्सरसाइज देनी है। एक्सरसाइज इंक्लूड योगा, योगा के साथ एक्सरसाइज है जिससे आपका हार्ट रेट बढ़े, एक्सरसाइज है जिससे आपको पसीना आए, जिससे आपके कैलोरीज बर्न हो। तो खाली योगा नहीं, योगा के साथ ऐसी एक्सरसाइज है जिसके आपसे आपका हार्ट रेट बढ़े, एरोबिक एक्सरसाइज जो बोलते हैं हम
0: जी,
1: ना?
0: जी।
1: साथ में योगा इज गुड बिकॉज योगा से मसल बनती है, तो अगर मसल बढ़ाओगे तो आपका फैटी लिवर जल्दी जाएगा।
0: जी बिल्कुल, क्या पतले लोगों को भी, जो बहुत दुबले पतले होते हैं, उनको भी फैटी लिवर होता है?
1: हाँ बिल्कुल, इनफैक्ट उनको जो फैटी लिवर होता है वो और
0: डेंजरस
1: होता है, उसको हम लीन नैश बोलते हैं।
0: जी।
1: पहले हमको लगता था कि जिसका वेट ज्यादा उनको ये बीमारी होती है, पर अगर आप देखा जाओ कंट्रीज लाइक जापान जहाँ पे लोग काफी पतले हैं, पर उधर इंसिडेंस ऑफ फैटी लिवर बहुत ज्यादा है, उसको हम लीन नैश बोलते हैं। जो हमें लगता है कि हम सब, जैसे इंडियन पॉपुलेशन को ले लो, सारे सॉर्ट ऑफ दुबले पतले, पतले हाथ पतले पैर होते हैं, मगर जो मेन फैट होता है वो बेली में होता है, मेरे जो तोंद जो बोलते हैं सबकी निकल आती है, वो फैट इज अ मोस्ट डेंजरस फैट। तो आपका हाथ पैर पतला होगा, आप पतले लगोगे, मगर अगर आपका स्कैन करेंगे हम, सीटी स्कैन एमआरआई, तो पूरा फैट है वो पेट के अंदर आएगा, एंड दैट इज अ फैट विच इज अ मोस्ट डेंजरस फैट। तो इसको लीन नैश बोलते हैं। ये पेशेंट्स को भी फैटी लिवर के साथ सिरोसिस होने की संभावना ज्यादा होती है।
0: जी जी जी। और पेट के इन्फेक्शन के बारे में बताइए कि क्यों इन्फेक्शन होता है, किसी किसी को बार बार इन्फेक्शन होता है, बार बार लूज मोशन, कई कई बार लूज मोशन के लिए जाना पड़ता है, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: अगेन लॉट ऑफ इट इज हमारी इम्यूनिटी कैसी है, हम क्या कैसा खाना खा रहे हैं। जैसे मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ जिनको लूज मोशन दोबारा होता है, मेक श्योर आप कुक्ड खाना खाओ, साफ सुथरा खाना खाओ। अगर आप बाहर रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो अवॉइड द चटनी, समोसा खा लो या जो भी खाना है, रोटी सब्जी खा लो, पर सलाद मत लो। बट अगर ये इमोशन दोबारा होता रहे, दैट कुड मीन अ साइन ऑफ अदर मेडिकल प्रॉब्लम। जैसे आपको पेट के इंटेस्टाइन के अल्सर हो सकते हैं, एक तरह की बीमारी बोलते हैं IBD, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिसमें इंटेस्टाइन्स में और बड़ी आंतरी में छाले होते हैं, उसे दोबारा लूज मोशन हो सकते हैं, कभी ब्लीडिंग हो सकता है। कई फूड एलर्जीज होते हैं जिसके कारण नौजिया, वॉमिटिंग, लूज मोशन हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा सीलैक डिजीज, ग्लूटेन एलर्जी। तो अगर ये सिम्टम्स थोड़े दिन तक रहे तो वी कैन मैनेज, पर अगर ये दोबारा होते रहे तो मेक श्योर यू सी योर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और थोड़ा बेसिक चेकअप कराओ कि कोई और बीमारी ना हो, जिसको ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होती है।
0: जी जी। और एक बात डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि जो अमूमन एक्सरसाइज से सेहत अच्छी होती है, लेकिन पेट की एक्सरसाइज खास तौर से जो योगा करते हैं उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो पेट की बहुत फास्ट एक्सरसाइज करते हैं, पेट को फुलाना पचाना, ये कहाँ तक कारगर है, सही है या गलत है?
1: हाँ, इसमें भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बहुत रिगरस स्टमक की एक्सरसाइज करना भी अच्छी नहीं है। पेट की जो हमारी लाइनिंग है उसमें दो बड़े मसल्स होते हैं, वो मसल्स को अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेच करो तो आगे जाके वो वीक हो जाते हैं, मसल के बीच का जोड़ निकल जाता है और हर्निया होने के रिस्क होते हैं।

0: पेट बाहर आ जाता है ज्यादा उल्टा। तो यू हैव टू बी केयरफुल, जो भी एक्सरसाइज करो ध्यान से करो, अंडर सुपरविजन करो, सही तरीके से करो। अगर उसको ठीक से नहीं करोगे, ज्यादा जोर लगाओगे पेट पे, तो हर्निया होने का रिस्क ज्यादा होता है।
1: जी, तो मतलब पेट की एक्सरसाइज से पाचन क्रिया पर फर्क पड़ता है?
0: बिल्कुल पड़ सकता है
1: जी। और डाइजेशन सही रखने के लिए कुछ है ऐसी कारगर दवा, कोई इलाज है लोगों के? क्योंकि हर कोई कहता है कि मुझे तो खाना पचता ही नहीं है, क्या करें?
0: हाँ, तो ये जो खाना पचता नहीं है, इसके लिए पूछना पड़ता है पेशेंट को, क्यों नहीं पच रहा है? बोलते हैं हमको खाना पचता ही नहीं है, पर उनको कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्जियत होती है। तो मेरा मानना होता है कि खाना आपको बहुत अच्छा पच रहा है, पूरा खाना आपने डाइजेस्ट कर लिया, आपको तो कॉन्स्टिपेशन हो गई है। जिसको नहीं पचे मतलब उसको लूज मोशन हो रहे हैं, तो पूछना जरूरी है कि प्रॉब्लम क्या है। पचना नहीं पचना इज अ डिफरेंट sort of पेशेंट का जो आउटलुक होता है वो अलग होता है, पच नहीं रहा है। तो मोस्ट टाइम्स ये पेशेंट का मतलब होता है या तो उनको कॉन्स्टिपेशन हो रही है या उनको एसिडिटी हो रही है। तो उसको बेसिक प्रॉब्लम्स को ट्रीट करो। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो फाइबर बढ़ाओ खाने में, पानी बढ़ाओ। मोस्ट टाइम्स हमने देखा है डाइट में, स्पेशली यंग किड्स पानी बहुत कम पीते हैं, तो पानी नहीं पीते हैं कॉन्स्टिपेशन होती है, पानी नहीं पियो तो और तकलीफें होती हैं, डिहाइड्रेशन होता है, फिर से कॉन्स्टिपेशन होती है, फिर खाना नहीं खाते, तो इट्स अ विशियस साइकिल। तो आई थिंक बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशन, वाटर इनटेक, गुड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि जो आपकी प्लेट है ना खाने की, वो कलरफुल होनी चाहिए। मतलब पेट में आपके दो तरह की भाजियां हो जाए, एक रेड हो जाए, एक ग्रीन हो जाए, रोटी हो जाए, वो कोई भी गेहूं की ले लो, जवार की ले लो, थोड़ा सा राइस लो, दाल ले लो, एंड इफ यू नॉन वेजिटेरियन एक छोटा सा मीट का पोर्शन हो जाए, बट योर प्लेट शुड बी कलरफुल।
1: लेकिन अभी एक चलन चला है कि या तो एक अन्न खाओ, चावल खाओ या रोटी खाओ, तो कुछ लोग ये भी करते हैं कि सिर्फ कढ़ी चावल खा लिया, सिर्फ दाल चावल, तो इससे बचना चाहिए।
0: बिल्कुल, इसमें तो खाली कार्बोहाइड्रेट खाया आपने, प्रोटीन तो बहुत मिनिमम हो गया।
1: तो बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, फिर हम आगे और बढ़ते हैं।
0: एक और गाना जो मुझे काफी पसंद है, बहुत पुरानी पिक्चर है, रॉकी पिक्चर का, क्या यही प्यार है। ये गाना फेमस मेरे स्कूल के टाइम पे, और काफी सुना है हमने
1: जी।

0: डॉक्टर साहब बीच में एसिडिटी की बात कर रहे थे जो बहुत बड़ी समस्या है, वहां पर एक बात रह गई थी वो ये कि कहीं एसिडिटी की वजह से, एसिड रिफ्लक्स की वजह से बीमारी को थोड़ी असावधानी हो या तो कहीं कैंसर का रूप भी लेती है वो?
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। अगर आपको एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है और आप दवाई नहीं ले रहे ठीक से या आपने इसका इलाज ना किया हो, तो जो एसिड होता है वो तेजाब है बेसिकली, ऊपर आके खाने की पाइप को जलाते रहता है, जला जला के फिर आगे एक अल्सर बनाता है और यही अल्सर आगे जाके कैंसर भी बन सकता है, जिसमें खाने की पाइप का कैंसर हो जाता है और खाने की पाइप छोटी हो जाती है और अटकने लगता है। इसके लिए मैंने पहले कहा था अगर खाना अटक रहा हो तो एंडोस्कोपी करना बहुत जरूरी है। अनकंट्रोल्ड एसिड रिफ्लक्स कैन लीड टू कैंसर्स इन द फूड पाइप।
0: जी, और ये जो एसिडिटी की समस्या, एसिड रिफ्लक्स, इसके लिए एक तो आपने एंडोस्कोपी बताया जांच, और क्या क्या जांच की पद्धति है, क्योंकि अभी तो टेक्निक बहुत एडवांस हो चुकी है, हमारे श्रोताओं को जानकारी।
1: हाँ, तो बेसिक एंडोस्कोपी तो सेम रही है, एंडोस्कोपी टेक्निक काफी सेम ही है, जिस तरीके से हम देखते हैं जो इमेजिंग होती है वो चेंज हो गई है। अभी काफ़ी हाई डेफिनेशन मॉनिटर्स हैं, 4K मॉनिटर्स हैं, हम हमारे एंडोस्कोपी के टाइम पे एक बटन दबाते हैं जिससे लाइट चेंज हो जाती है, हमको और बेटर दिखता है। हमारे मशीन्स पे भी AI भी लगना शुरू हो गया है, जो अगर हम सपोज ब्लिंक कर रहे हैं, हमने लेफ्ट एंड राइट देख लिया एक सेकंड के लिए, पर वो मशीन पकड़ लेते कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है और रुक जाती है और हमको कहती है कि यहाँ पे ठीक से देखो। ये एक सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गया AI इन एंडोस्कोपी। दूसरा, अगर एंडोस्कोपी नॉर्मल है, हमको कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम कभी कभी खाने की पाइप का प्रेशर मेजरमेंट करते हैं, उसको मैनोमेट्री बोलते हैं, छोटी सी पाइप डालते हैं नाक से पेट में और वो पूरे खाने की पाइप के प्रेशर मेजर करती है, ये क्या प्रेशर की प्रॉब्लम है जिसके कारण खाना आगे नहीं जा रहा है या रिफ्लक्स कर रहा है। और फिर लास्ट एक और टेस्ट है जिसमें हम खाने के पाइप में एक पाइप डाल देते हैं और पाइप के साथ पेशेंट घर चले जाता है और जब उसको एसिडिटी लग रही हो रहा है, बटन दबाता है और विद इन 24 to 48 hours हम वो पूरे खाने के पाइप का टेस्टिंग करते हैं कि कितना एसिड रिफ्लक्स हो रहा है। पेशेंट जो कह रहे हैं कि हमको एसिड रिफ्लक्स है, जरूरी नहीं हो एसिड रिफ्लक्स, वो खाली एक सिम्टम हो सकता है, तो उसको 24 hour pH pH प्रोब बोलते हैं, जिसमें हम डिटेक्ट करते हैं कि एक्चुअली एसिड ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देयर आर मेनी अदर वेज टू डिटेक्ट द एसोफेगस।
0: जी, तो इतनी सारी इलाज की और जांच की सुविधाएं हैं, तो मेरे ख्याल से तकलीफ हो तो सीधे डॉक्टर के पास जाना चाहिए अपनी अटकलें लगाने के बजाय। डॉक्टर साहब, एक पेट संबंधी एक बीमारी है जो कॉमन हो रही है आजकल, कोलाइटिस, ये क्या है, कौन सी बीमारी है और इससे क्या तकलीफें होती हैं?
1: तो कोलाइटिस बेसिकली एक ब्रॉड टर्म है, कोलाइटिस मतलब बड़ी आंतरी में कुछ इशू है। अभी वो इशू अगर लूज मोशन हो तो उसको भी लोग कोलाइटिस का नाम दे देते हैं। जो बीमारी हमको

0: डिटेक्ट करनी है उसको आईबीडी बोलते हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिसमें बड़ी आंतरी कोलन के अंदर छाले होते हैं और लूज मोशन ऑफ ब्लीडिंग होता है, तो उसको आईबीडी बोलते हैं। ये जानना जरूरी है कि आपको कोलाइटिस आईबीडी वाली है कि नहीं, क्योंकि अगर आईबीडी की कोलाइटिस है तो ट्रीटमेंट उसकी लाइफ लॉन्ग रहती है। ये इम्यून मीडिएटेड डिसऑर्डर है, अगर इसको ट्रीटमेंट नहीं करो तो आगे जाके कैंसर भी बन सकता है। जो दूसरी कोलाइटिस होती है वो नॉन स्पेसिफिक कोलाइटिस होती है, मतलब हमको लूज मोशन हो गए और लूज मोशन बीच में होते रहते हैं और उसको नाम दे दिया कोलाइटिस, बट दैट इज नॉट रियली अ डिजीज, इट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ओनली। तो जानना कि आपको अल्सर वाली कोलाइटिस है कि नॉन अल्सर वाली कोलाइटिस बहुत जरूरी है।
1: तो मतलब डॉक्टर के पास संपर्क करें, यही ज्यादा बेहतर होता है। और अब डॉक्टर साहब एक गाना सुनते हैं पहले,
0: शायद मेरी शादी का ख्याल
1: सुनते हैं डॉक्टर साहब ये गाना।

0: डॉक्टर साहब बताइए कि आईबीएस और फैटी लिवर, एसिडिटी, जो पेट संबंधी ये जो बीमारियां हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बीमारियां हैं, इनसे बचने के लिए किस तरह की अवेयरनेस रखें, किस तरह की सजगता रखें और क्या सावधानी बरतें हमारे श्रोता?
1: तो ये जितनी भी ये बीमारियां आई थिंक ये अवेयरनेस घर से शुरू होती है, बचपन से शुरू होनी चाहिए। एज ग्रोइंग अप एज अ किड हमारे घर में एजुकेशन होनी चाहिए अबाउट डाइट। आई थिंक डाइट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट अगर कोई सीख है वो डाइट है कि प्रोटीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, फैट क्या होता है। ये तीन बेसिक पिलर्स हैं हमारे लिए जिसके ऊपर हम खाना खाते हैं। कितना प्रोटीन खाना चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, कितना फैट खाना चाहिए। सो डाइट इज वन पिलर ऑफ हेल्थी सोसाइटी, हेल्थी पेट की गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिकल इश्यूज के लिए। सेकेंड पिलर इज एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन। आई थिंक न्यूट्रिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेस्ड ऑन व्हाट आई टोल्ड एंड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करोगे तो पेट की काफी बीमारियां अपने आप ही ठीक हो जाएंगी, स्पेशली फैटी लिवर, आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एसिड रिफ्लक्स डिजीज। द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, के कब आपको टेस्टिंग करनी चाहिए, कब आपको डॉक्टर को देखना चाहिए। तो अगर ये तीन पिलर्स हम करें, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर, ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: जी डॉक्टर साहब, हमने कई लोगों को ये सुना है कहते हुए कि सिर दर्द हो रहा है और सिर दर्द की दवा न लेके एसिडिटी की दवा लेते हैं तो सिर दर्द ठीक हो जाता है, या उल्टी की दवा लेते हैं तो सिर दर्द ठीक हो जाता है। तो मुझे बहुत अचरज हुआ कि उल्टी की दवा लेने से सिर दर्द कैसे ठीक हो गया। ये क्या समस्या है?
1: ये बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि ये पेशेंट जब हमारे पास भी आते हैं कि अगर मेरे को एसिडिटी हो गई और सिर दर्द हो गया है और एसिडिटी की दवाई लो तो मेरा सिर दर्द चले जाता है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्ट ये पेशेंट्स को माइग्रेन होता है, बेसिकली खाना खाया नहीं होता टाइम पे, स्ट्रेस होता है, हेडेक शुरू हो जाती है, तो एसिडिटी की दवाई लो तो एसिडिटी चली जाती है, पर फॉर सम रीजन द स्ट्रेस गोज डाउन एंड द माइग्रेन आल्सो गोज अवे। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट कि इनको माइग्रेन है कि नहीं। तो फर्स्ट पार्ट आपका सवाल था कि हेडेक होती है पर एसिडिटी की दवाई लो हेडेक चली जाती है, तो ये मैंने अपनी सारी किताबें छांट लिए, मुझे इसका जवाब किधर नहीं मिला। ये मैंने बाहर कभी नहीं देखा, ये मैंने इंडियन पेशेंट्स में ही देखा है कि एसिडिटी की दवाई लो मेरी हेडेक चली गई है। तो आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन फॉर इट, बट जब मैं पेशेंट्स मेरे पास ये कंप्लेन लेके आते हैं ना, तो मेरा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि ये माइग्रेन ना हो।
0: Okay.
1: माइग्रेन कैन ट्रिगर बोथ एसिड रिफ्लक्स, नॉजिया, वॉमिटिंग एंड हैव हेडेक्स। माइग्रेन को ठीक करोगे तो ये भी ठीक हो जाएगा। नाउ ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट ने बहुत देर तक खाना ना खाया हो, इसके लिए एसिडिटी, अगर हम खाना स्किप करें तो हमारे शुगर्स कम होगी तो अपने आप हेडेक शुरू हो जाएगी ना, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, इट्स बिकॉज ऑफ स्किपिंग मील्स। इसके लिए आपको एसिडिटी हो रही है, इसके लिए आपको हेडेक हो रहा है।
0: जी, हमने भी कई बार एक डॉक्टर से और पूछा था ये सवाल, तो उन्होंने कहा था नहीं, सिर दर्द और एसिडिटी का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ने
1: कुछ तो है, देयर इज सम कोरिलेशन बिटवीन डाइट, नॉट ईटिंग ऑन टाइम, एसिडिटी एंड हेडेक्स।
0: जी, पर आजकल ये समस्या बहुत हो रही लोगों में कि स्टमक अपसेट

0: होता है तो सिर दर्द होने लगता है। तो माइग्रेन अगर किसी को है मान लीजिए तो किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए?
1: तो अगर माइग्रेन है तो वी शुड सी अ न्यूरोलॉजिस्ट, जो ब्रेन के डॉक्टर होते हैं, बिकॉज बहुत ध्यान से देनी पड़ती है क्योंकि सम ऑफ द माइग्रेन मेडिसिंस कैन कॉज एसिडिटी। तो अगर आपको एसिडिटी ऑलरेडी है तो माइग्रेन स्पेशलिस्ट को जब देखोगे तो यू हैव टू टेल कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो दे मेक श्योर दे गिव एन एंटासिड उसके साथ।
0: जी जी जी। और हम फैटी लिवर के बारे में बात कर रहे थे कि फैटी लिवर जिनको होता है, जिन पता चल जाता है, तो कई बार ऐसा लगता है कि कुछ लोग बहुत अल्कोहल लेते हैं या धूम्रपान करते हैं, सुपारी खाते हैं, तो क्या ये एक बड़ी वजह है फैटी लिवर की?
1: बिल्कुल
0: तो,
1: बिल्कुल।
0: या फिर जो लोग नहीं लेते उन्हें भी होता है तो? हाँ,
1: तो अगर अब लिवर का टुकड़ा ले लो और फैटी लिवर है सपोज किसी को, वो लिवर का एक पीस निकाल के पैथोलॉजिस्ट को दिखाओ, वो पैथोलॉजिस्ट आपको बोल नहीं पाएगा, कह नहीं पाएगा कि ये पेशेंट अल्कोहल पीने के कारण फैटी लिवर हुआ है कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है। दोनों सेम चीज करते हैं। अगर आप अल्कोहल ना पियो, आपकी कार्बोहाइड्रेट इंटेक ज्यादा हो, तो लिवर में एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट फैट की तरह डिपॉजिट हो जाता है। अल्कोहल इज ऑल्सो लाइक अ कार्बोहाइड्रेट, वो भी सेम चीज होता है। एक्सेसिव अल्कोहल पीने से लिवर के अंदर फैट करके डिपॉजिट हो जाता है। तो ओनली वे हम अलग कर पाते हैं कि अल्कोहल है नॉन अल्कोहल, पेशेंट को पूछ के, हिस्ट्री के ऊपर। तो अगर आपको फैटी लिवर ऑलरेडी है तो अल्कोहल आपको जरा भी नहीं पीनी चाहिए। वैसे भी अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए बिकॉज इट इज अ ग्रेड वन कार्सिनोजेनिक, मतलब अल्कोहल कैन कॉज कैंसर्स नॉट ओनली ऑफ द लिवर बट ऑल्सो ऑफ द माउथ, द फूड पाइप, द स्टमक एंड अदर ऑर्गन्स। तो अगर आपको ऑलरेडी एक बीमारी है तो आप उस पर दूसरी बीमारी क्यों डालोगे? धूम्रपान टबैको सेम चीज, धूम्रपान टबैको करने से एसिडिटी ज्यादा होती है, ऑलरेडी एसिडिटी से अल्सर होके कैंसर होने की संभावना ज्यादा है, उसके ऊपर से आप धूम्रपान करो, तंबाकू खाओ, तो ये प्रॉब्लम काफी बढ़ सकती है। अल्कोहल और फैटी लिवर गो हैंड इन हैंड। अगर आप अभी न्यू जो हमारा सिस्टम है जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को फैटी लिवर है कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज है, तो एक बीच का भी आता है समथिंग कॉल्ड मेट एएलडी, मतलब जहां पे अल्कोहल भी थोड़ा है, फैट भी थोड़ा है और दोनों बीमारियां पड़ रही हैं। ये सबसे डेंजरस है बिकॉज ऑलरेडी एक बीमारी चल रही है, आपने दूसरी बीमारी डाली है, तो ये जल्दी लिवर सिरोसिस और लिवर को खराब करती है। तो फैटी लिवर पेशेंट शुड नॉट बी टचिंग अल्कोहल।
0: जी जी। डॉक्टर साहब, लिवर संबंधी और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं जिसके लिए सजग रहना चाहिए श्रोताओं को?
1: तो जो इंडिया में सबसे कॉमन है वो है हेपेटाइटिस बी, वायरस।

0: लिवर इंजरी, हेपेटाइटिस बी। बाकी और भी वायरसेस होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस ई होता है, ये बेसिकली रेनी सीजन में हमको ज्यादा दिखता है, जब वाटर कंटेमिनेशन होता है, फीकोरल कंटेमिनेशन बोलते हैं, खान पान साफ नहीं होता है, तब ये वायरस होता है, लिवर पे इंजरी करता है पर आके चला जाता है। हेपेटाइटिस ई ज्यादा हम प्रेगनेंसी में देखते हैं, हेपेटाइटिस ए कैन बी सीन एनी टाइम। एक और तरह का वायरस होता है हेपेटाइटिस सी, ये अभी हम कम देखते हैं, फॉरेन में ज्यादा दिखता है, इंडिया में कम दिखता है, ये बेसिकली ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है या कोई नीडल इंजरी से या कभी कभी सेक्सुअली भी होता है। हेपेटाइटिस सी की भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो मेरा मानना है कि ये वायरस इंजरीज हैं, ये लिवर को होती हैं, ये प्रिवेंटेबल डिजीजेज हैं। हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन आता है, हेपेटाइटिस बी का आता है, और अभी हेपेटाइटिस ई का भी वैक्सीन आ गया है। तो अपने टेस्ट कराइए, अगर नेगेटिव है तो आप सब वैक्सीन लीजिए ताकि ये बीमारी ना हो। ये कॉमन इंजरी है लिवर की। तो फैटी लिवर हमने बोला, अल्कोहलिक लिवर इंजरी बहुत कॉमन है, अल्कोहल पीने के कारण लिवर फेल है वो तो हम जानते ही होता है, ये कॉमन है। वायरसेस कॉमन है, फिर बाकी की जो लिवर की इंजरीज हैं वो काफी रेयर होती हैं। लास्ट चीज मैं कहूंगा गॉल ब्लैडर स्टोन, गॉल ब्लैडर में पथरी होती है, वो भी लिवर के नीचे ही बैठती है, उससे भी कभी कभी लिवर को इंजरी होती है, अगर लिवर की पथरी स्लिप हो जाए, लिवर की ट्यूब में आके फंस जाए तो उससे भी जॉन्डिस हो सकता है। तो ये कॉमन लिवर की बीमारियां है, गॉल स्टोन्स, अल्कोहल, फैटी लिवर एंड वायरसेस।
1: जी, आपने गॉल ब्लैडर का जिक्र किया तो मेरे जहन में ये बात आई कि कई बार जो उल्टी होती है तो क्या गॉल ब्लैडर में स्टोन है, ये भी वजह होती है क्या?
0: बिल्कुल हो सकती है, कभी कभी पेशेंट को पेट में थोड़ा दर्द होता है, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, स्पेशली फैटी फूड खाके, तला हुआ खाके, दिस इज अ साइन कि आपका शायद गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है। इसके लिए मैंने कहा था पहले भी कि अगर पेट का दर्द जारी रहे तो इन्वेस्टिगेशन करनी जरूरी है, एक सोनोग्राफी करेंगे उसमें ये पकड़ा जाएगा आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है कि नहीं।
1: जी जी, और गॉल ब्लैडर अगर ऑपरेट करके निकाला जाए तो उसके कुछ आगे चलकर मरीज को कुछ तकलीफ होती है?
0: नहीं, जरा भी नहीं। गॉल ब्लैडर और अपेंडिक्स ऐसे दो चीजें हैं जो निकाल के मोस्ट पेशेंट्स को कोई तकलीफ नहीं होती, लाइफ नॉर्मल कटते रहती है।
1: ये बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों में होती है तो दूर हुई। और डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि जो आईबीएस की समस्या है वो भी बहुत कॉमन है, अमूमन लोगों को ये होता है, ये जिसको सिकनेस ही बोलते हैं हम लोग, कि यात्रा पर जाना है तो जैसे वोमिटिंग सेंसेशन होने लगा या बार बार मोशन के लिए जाना पड़ता है, तो इसकी वजह क्या होती है? एक तो स्ट्रेस आपने बताया था, तो आंतों से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है क्या? ये
0: बेसिकली मन और आंतों के कनेक्शन की प्रॉब्लम है। अगर हमको पता हो हमको जाना है किधर, तो वो स्ट्रेस ऑफ गोइंग आउटसाइड, उसके कारण हमको लगता है कि मोशन करना चाहिए, मोशन करना चाहिए, और मोशन जाते हैं। तो अगर सपोज लूज मोशन की इशू है, तो कई मेरे पेशेंट है जो अगर अपने मन को नहीं शांत कर पा रहे या नहीं कर पा रहे ठीक, तो हम एक एंटी डायरियल दे देते हैं दवाई, कि अगर आपको ट्रैवल करना है तो एक गोली ले लो जाने के पहले, अगर वॉमिटिंग इज अ प्रीडोमिनेंट प्रॉब्लम तो एक वॉमिटिंग की दवाई लेते हुए जाओ, एसिडिटी प्रॉब्लम है तो एक एसिडिटी की दवाई खाते हुए जाओ, ताकि आपके जर्नी ठीक जाए, आप पहुंच जाओ जहां पहुंचना है। तो बेसिकली इट इज टू डू विद, आई वुड नॉट से वीक इंटेस्टाइन्स बट सेंसिटिविटी, दिस इज ऑल टू डू विद सेंसिटिव, हमारा पेट सेंसिटिव है बहुत।
1: तो इस समय आईबीएस की समस्या से जब ग्रसित हो तो क्या फूड लेना चाहिए मरीज को, मतलब सॉलिड फूड खाना चाहिए या लिक्विड या पानी? हाँ, या तो कुछ नहीं,
0: नहीं नहीं, ऑलवेज लिक्विड तो लेना ही चाहिए ताकि यू कीप वेल हाइड्रेटेड, बट जो इजी डाइजेशन हो, जैसे कच्ची चीजें नहीं खानी चाहिए, कच्चा सलाद हो गया, यू नो फ्रूट, ज्यादा पत्ते वाली भाजी अवॉइड कर लो ट्रैवल में, कुक्ड फूड खाओ, राइस इजी होता है, दाल राइस खिचड़ी इजी है डाइजेस्ट करने के लिए, पानी अच्छे से पियो, छाछ पियो ताकि यू वेल हाइड्रेटेड।
1: और क्या उस समय आंतों में स्वेलिंग आई होती है आईबीएस?
0: एक्चुअली आईबीएस में कुछ नहीं आया होता, आईबीएस इज अ सेंसिटिव थिंग, अगर आप स्कैन करके देखो, एंडोस्कोपी करके देखो तो सारा नॉर्मल होता है, इट इज अ सेंसिटिविटी थिंग, इट्स अ पेट और माइंड का प्रॉब्लम है ये।
1: ओके, अब चलते चलते एक गाना सुनवाइए हमारे श्रोताओं को, बताइए कौन सा गाना सुनवाए।
0: चले चलो ये गाना सुना है, चले चलो,
1: चले चलो लगान का,
0: लगान का,
1: लगान फिल्म का गाना चले चलो।

0: प्रोडक्ट सब आजकल फैशन में है कि लिवर की बीमारी के लिए लिवर डिटॉक्स कुछ पाउडर मिला के घोल बनाए पी लिया, और बहुत सारे बीज का प्रचार हो रहा है, ये बीज वो बीज बना के घोल के पी लो, तो ये सब कितने कारगर होते हैं मरीज के लिए, चाहे वो पेट की जितनी समस्या है।
1: हाँ, तो जैसे आपने कहा ना, एज अ ह्यूमन हम हमेशा चाहते हैं कि सबसे सिंपलेस्ट वे ले लो बार। सिंपलेस्ट वे क्या होता है कि कोई बोल जा रहा ये तेल अच्छा है ये ले ले इसे मैं ठीक हो गया, या कोई बोले कि ये गोली खा लो गोली से आप ठीक हो जाओगे। बट जो रियल वे है, जैसे वेट लॉस करना, एक्सरसाइज करना, डाइट पे कंट्रोल करना, अपने मन पे कंट्रोल करना, अगर ये आप कर पाए तो ये सब नुस्खों की जरूरत नहीं है। और वी नो कि ये सब चलते नहीं है, कोई नुस्खा चलता नहीं है। वेट लॉस एक्सरसाइज का कोई शॉर्टकट नहीं है, खाना अच्छा खाना, टाइम पे खाना, अवॉइड टेकिंग सप्लीमेंट्स, अवॉइड टेकिंग आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन, क्योंकि हमको पता है कि हर्बल मेडिसिन आर नॉट रेगुलेटेड। अगर आपको कोई दवाई दे जो हमारे फार्मेसी में बनती है, जब रेगुलेटेड दवाइज है, आपको पता है कि एक 500 ml पैरासिटामोल है, 500 ml पैरासिटामोल है। जो आप जड़ी बूटियां लेते हैं या जो आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं, मोस्टली दे आर डार्क इन कलर बिकॉज उसमें भस्म होता है, मेटल्स होते हैं, आपको पता नहीं उसके अंदर क्या है।
0: और स्टेरॉइड भी आता है।
1: और ऐसी कोई चीज आप अपने मुंह में डालोगे और स्वालो करोगे, इंजेस्ट करोगे, उसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे किसी को नहीं पता। मेडिसिन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इट हैज टू बी टेस्टेड एंड ट्राइड, मतलब आपने ये दवाई लोगों को दी है, इनको देखे, फिर फॉलो किया है, फिर देखा है कि इसका फर्क पड़ रहा है कि नहीं, देन वी मेडिसिन को अप्रूवल मिलती है। इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस। एक एक दवाई जो अभी इजीली मिल जाती है उसके पीछे बहुत इयर्स ऑफ रिसर्च होती है। तो ये जो ओवर द काउंटर मेडिसिन जो बोलते हैं, जो आजकल नेचुरोसूटिकल्स करके बिकते हैं, जो बहुत फैशन में है अभी, उस पर कोई डेटा नहीं है। और वर्स्ट कम टू वर्स्ट, हमको ये नहीं पता कि उसका साइड इफेक्ट्स आगे जाके क्या होगे। तो अगेन, बी सिंपल, लिव अ सिंपल लाइफ, एक्सरसाइज, ईट राइट, इट इज अ लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम। अगर अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करोगे, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स विल गेट सॉल्व्ड।
0: डॉक्टर साहब, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतनी ढेर सारी पेट संबंधी बीमारियों की जानकारी दी, जो बहुत जरूरी जानकारियां हैं, और हमें उम्मीद है कि श्रोताओं को बहुत फायदा पहुंचेगा। आपका तहे दिल से शुक्रिया। विविध भारती परिवार की ओर से नमस्कार।
1: थैंक यू, नमस्कार।
2: तो ये था सुप्रसिद्ध गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी का था।

0: बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
4: यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है, FM 107 MHz पर। शाम के 5 बजे हैं, आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

0: दीवाने गजराज
1: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 15 है। ये बंसीपुर, बगड़ा

0: औरंधा, दुर्ती, सोनगरा, धरहोरा, चंदौरा, सरहरी, करंजवार, हरिहरपुर, परमेश्वरपुर, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के राजपुर, रामानुजगंज, वाड्रफनगर में हाथियों की कुल संख्या 10 है। ये अखोरा, कुंदीकला, जामदोहर, सिधमा, बदौली, पेंडारी, कोटराही, भगवानपुर, नवापारा, चीनिया, महावीरगंज, कनकपुर, टकिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये सकालो, किशुनपुर, घंघरी, खलीबा, पड़ौली, जमीरा, मसगा, असकला, दोरना, जरहाडी, सायर, लक्ष्मणगढ़, सस्कालो, ढेकी डोली, एरन, नवापारा, गढ़गांव, बरडाण, दाती, ढा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव और दुलदुला में हाथियों की कुल संख्या 13 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, खड़ामाचा, पीठा आमा, राजा आमा, महेशपुर, साजापानी, गट्टी बुड़ा, पाकर टोली, ढोढ़ा डी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, बाकारुमा, लेलुंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 132 है। ये कुड़ेकेला, पुरुंगा, छाल, बोजिया, औरानारा, बेहरामार, लोटान, कोयलार, सागरपुर, ढोढ़ा गांव, केदा टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के केंदई, जडगा और एतमा नगर में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये लालपुर, कोयलार गढ़रा, परला, चोटिया, कापानवापारा, घुचापुर, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, कुकरी कादर, मड़ई, कठ मोरगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़, घरघोड़ा और खरसिया में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये बंगुरसिया, सपनई, जोबी, बरगढ़, नागदरहा, पंडरी पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानक में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के बार और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये गुड़ागढ़, फुरफुंदी, तालदादर, अचानकपुर, नवागांव, पकरीत, तेंदुचुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
2: प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। FM बैंड पर 5:05 हुए हैं। सुनिए कार्यक्रम विवरण। शामी कर्शल पेश करेंगे 5:10 पर। 5:30 पर आप सुनेंगे युवावाणी, जिसमें आज की बात का विषय रहेगा योग और आज का युवा, रियल लाइफ से रियल लाइफ का संतुलन। चर्चा में सुनेंगे सड़क हादसे में घायल की सहायता कर राहवीर बने। गैर फिल्मी गीत सुनेंगे। चर्चा में सुनेंगे नशा मुक्त भारत अभियान, हर नागरिक का हो इसमें योगदान। फिल्म संगीत का आनंद ले सकेंगे 6:20, 7:00, 8:30 पर। रात 10:00 सुनेंगे विविध संगीत। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अनुरोध लेकर आएंगे 10:30 पर। चौपाल का समय रहेगा 7:20 का, जिसमें आज की बात का विषय रहेगा।

0: लाभदायक व्यवसाय मछली सह मुर्गी पालन। नसीहत में सुनेंगे कद्दू वर्गीय नारवर्गीय फसल ककोड़ा की खेती। गैर फिल्मी गीत पेश करेंगे 8:20 पर।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।
2: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
3: संदेश पहले आप सुन रहे थे कार्यक्रमों के रूपरेखा कार्यक्रम विवरण में। हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र के माध्यम से 107.7 MHz पर। 5:10 हुए हैं। वक्त हो चला है कार्यक्रम शामी गजल का। उत्कर्ष शर्मा की आवाज में सुनिए गजल को, जिसे लिखा है सिया सचदेव ने, धुन बनाई है देव बसक ने।

0: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों

की कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
3: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहुं सुदर्शन।
4: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
5: श्रोताओं, संधि से पहले आप सुन रहे थे अजाम अली मुकर्रम और नमिता बनर्जी की आवाजों में गजल को। संगीत दिया था अजाम अली मुकर्रम ने ही, असद अजमेरी की रचना थी। कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं साधना सरगम जसविंदर सिंहा बंटी की युगल आवाजों में इस गजल को। शब्द रचना ख्वाजा फतेहुल्ला के हैं, संगीत है जीतू गाबा की।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagarh, यानी shrotarayagad@gmail.com।
1: श्रोताओं, गजलों के कार्यक्रम शामी गजल में आप सुन रहे थे साधना सरगम। जसविंदर सिंह बंटी की आवाजों में इस गजल को ख्वाजा फतेहुल्ला ने इस गजल को लिखा था। संगीत से सजाया था जीतू गाबा ने। इसके साथ ही गजलों का कार्यक्रम शामी गजल अब समाप्त होता है। FM 107.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। संध्या के 5:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त और होस्ट वर्षा, और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम युववाणी। सभी श्रोताओं का युववाणी प्रोग्राम में स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि समय बदलता है और उसके साथ बदल जाती है हमारी आदतें। कभी शाम होते ही मोहल्ले के मैदान बच्चों और युवाओं की हंसी से गूंज उठते थे। दोस्त आमने सामने बैठ के घंटों बातें किया करते थे, लेकिन आज का नज़ारा कुछ अलग है।

अब लोगों के हाथों में हाथ कम और मोबाइल ज़्यादा दिखाई देता है। चेहरे सामने होते हैं लेकिन नज़रें स्क्रीन पर टिकी रहती हैं। आज का युवा पहले से कहीं ज़्यादा जागरूक, पढ़ा लिखा और टेक्नोलॉजी से जुड़ चुका है। हमारे पास दुनिया भर की जानकारी है, नए अवसर हैं और अपने सपनों को पूरा करने के अनगिनत रास्ते हैं। लेकिन इसी चमक दमक के बीच एक सच्चाई ये भी है कि जितना समय हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में नहीं लगाते, उससे कहीं ज़्यादा समय दूसरों की ज़िंदगी देखने में गुजार देते हैं। धीरे धीरे तुलना करने की ये आदत हमारे आत्मविश्वास को कम करने लगती है। हम भूल जाते हैं कि सोशल मीडिया पे दिखाई देने वाली तस्वीर पूरी सच्ची कहानी नहीं होती। यही वो मोड़ है जहाँ योग हमें एक नई सोच देता है। योग हमें ये नहीं सिखाता कि दुनिया से दूर भाग जाओ, बल्कि योग ये सिखाता है कि दुनिया के बीच रह के भी अपने मन को स्थिर और शांत कैसे रखा जाए। योग का मतलब है अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने जीवन को संतुलित करना। दोस्तों, ज़रा सोचिए, किसी दिन इंटरनेट कुछ घंटों के लिए बंद हो जाए तो हम कितने ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं। लेकिन अगर मन की शांति हमसे दूर हो जाए तो शायद हम उसे महसूस भी नहीं करते। यही आज की सबसे बड़ी चुनौती है कि हम रियल लाइफ को ही अपनी रियल लाइफ मान रहे हैं। दोस्तों, सुबह की ताज़ी हवा में कुछ मिनट गहरी सांस लेना, शांत बैठ के ध्यान करना, मेडिटेशन करना, ये छोटी मोटी आदतें धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व में बड़ा बदलाव लाती हैं। पढ़ाई में मन ज़्यादा लगता है, काम में एकाग्रता बढ़ती है और छोटी छोटी बातों पे गुस्सा भी कम आने लगता है। आज हम देर रात तक मोबाइल चलाते हैं, सुबह उठने में देर होती है, दिन भर आलस महसूस होता है और फिर कहते हैं कि काम में मन नहीं लगता। असल में समस्या केवल मोबाइल नहीं है बल्कि हमारी असंतुलित दिनचर्या है। ऐसे में योग जीवन में संतुलन लाता है। दोस्तों, जिंदगी कोई रील नहीं है जिसे पसंद ना आए तो अगले ही पल स्क्रॉल कर दे। असली जिंदगी में हर दिन नई चुनौतियां आती हैं, मेहनत करनी पड़ती है, धैर्य रखना पड़ता है और कई बार असफलताएं भी झेलनी पड़ती हैं। उन्हीं असफलताओं से सीखना भी पड़ता है। योग हमें इन्हीं परिस्थितियों में मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। इसलिए दोस्तों, योग अपनाइए। सुबह की शुरुआत योग से कीजिए, क्योंकि रील्स कुछ मिनटों का मनोरंजन दे सकती हैं लेकिन योग पूरी जिंदगी का संतुलन देता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की बात। आज के क्रम गैर फिल्मी गीत में बढ़ने से पहले करते हैं चर्चा कुछ विषयों पे। दोस्तों, सड़क पे चलते समय हम सभी सुरक्षित सफर की उम्मीद करते हैं, लेकिन अगर अचानक हमारे सामने कोई सड़क हादसा हो जाए तो हमारा पहला कदम क्या होना चाहिए? सिर्फ देख के आगे बढ़ जाना, वहाँ पे खड़े होकर फोटो वीडियोस बनाना या किसी की ज़िंदगी बचाने की कोशिश करना? यही हमें राहवीर बनने का संदेश देता है। दोस्तों, राहवीर वो होता है जो सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की समय पर मदद करता है, क्योंकि हादसे के बाद के शुरुआती कुछ मिनट किसी की जान बचाने में सबसे अहम होते हैं। अगर आपके सामने कोई दुर्घटना हो तो घबराने के बजाय तुरंत 108 या 112 पे सूचना दें। यदि सुरक्षित हो तो घायल की मदद करें और ज़रूरत पड़ने पे आसपास के लोगों का सहयोग भी लें। याद रखें, आपकी छोटी सी कोशिश किसी परिवार की खुशियां बचा सकती हैं। हम युवाओं की भूमिका यहाँ सबसे बड़ी ज़रूरी है। ऊर्जा, संवेदनशीलता और जागरूकता से भरपूर हम युवा अगर संकल्प लें कि सड़क हादसे के समय हम मूक दर्शक नहीं बल्कि मददगार बनेंगे तो निश्चित रूप

रूप से हजारों लोगों की जान बचाई जा सकती है। इसलिए सड़क हादसे में घायल की सहायता कर राहवीर जरूर बने। दोस्तों, इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के क्रम गैर फिल्में गीत की तरफ। पहला गीत आपको सुनवाते हैं पायल देव और स्टेबिन की युगल स्वरों में। इस गीत को लिखा है राजशेखर ने, संगीत दिया है पायल देव ने।

दोस्तों, अगले गैर फिल्मी गाने को सुनवाने से पहले करते हैं चर्चा कुछ विषय पे। दोस्तों, नशा कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि नई समस्याओं की शुरुआत बन जाता है। एक आदत कब लत में बदल जाए इसका पता भी नहीं चलता। इसका असर सिर्फ उस इंसान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके शरीर, उसके परिवार, दोस्तों और पूरे समाज पे पड़ता है। आज के समय में हम युवाओं को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सही दिशा और सही संगत की। लोगों को देख के, उनकी बातों में आके कई लोग नशे की शुरुआत कर देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वही आदत पढ़ाई, करियर, सेहत और रिश्तों पे भारी पड़ने लगता है। इसी सोच और आदत को बदलने के लिए नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन ये सिर्फ सरकारी अभियान नहीं, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी भी है कि हम संकल्प लें कि नशे से दूर रहेंगे, दूसरों को भी इसके नुकसान बताएंगे और अपने आसपास ऐसा माहौल बनाएंगे जहां स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा मिल सके। जब हर नागरिक अपना योगदान देगा, तभी नशा मुक्त भारत अभियान अपने उद्देश्य तक पहुंचेगा और हमारा देश स्वस्थ, सुरक्षित और मजबूत बनेगा। दोस्तों, इसी के साथ लीजिए आपको सुनवाते हैं अगला गाना। इस गाने को लिखने के साथ गाया भी है और संगीत भी दिया है अखिलेश कुमार ने।

दोस्तों, इस गीत के बाद आपको सुनवाते हैं कुमार का लिखा और जावेद अली का गाया ये गाना। इस गीत की धुन बनाई है रोचक कोहली ने।

दोस्तों, इस गीत के बाद आपको सुनवाते हैं काजीनामा और मुसर्रत नाजिर के युगल स्वरों में इस गाने को। गीत की रचना की है मुस्तफ़ा जायदी ने, संगीत है खलील अहमद का।

दोस्तों, इस गीत के बाद आपको सुनवाते हैं अगला गाना। इस गीत को गाया है श्रेया घोषाल और टोनी कक्कड़ ने। संगीत है टोनी कक्कड़ का, गीत को लिखा है प्रिंस दुबे ने।

दोस्तों, आपको हमारा ये आज का युवावाणी प्रोग्राम कैसा लगा? साथ ही आकाशवाणी के अन्य सभी कार्यक्रमों से संबंधित आपके विचार और प्रतिक्रियाएं हमसे साझा जरूर कीजिएगा। हमारे कार्यक्रमों से संबंधित अगर आपके कुछ सुझाव हैं, शिकायतें हैं, प्रश्न हैं या प्रशंसाएं हैं, उन्हें आप लिख के हम तक जरूर पहुंचाइए, पत्रों और ईमेल के जरिए। आप अपनी बातें हम तक पहुंचा सकते हैं और उन्हीं बातों से संबंधित हमारे विचार और रिस्पांस को आप सुन पाएंगे हमारे पहले सोमवार के क्रम पत्र मिला में। पत्र यानी लेटर के लिए हमारा पता है क्रम पत्र मिला, युववाणी प्रभाग द्वारा, केंद्र निर्देशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 21, आकाशवाणी रायगढ़। हमारा पिन कोड है 496001। आप अपनी बातें और प्रतिक्रियाओं को हम तक ईमेल के जरिए भी पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagad यानी shrotarayagad@gmail.com। ईमेल करते समय सब्जेक्ट में पत्र मिला जरूर लिखें, तभी आपका ईमेल हम तक पहुंच पाएगा। हमें आपके पत्रों और ईमेल का इंतजार रहेगा। दोस्तों, इसी के साथ करते हैं हमारे आज के युववाणी कार्यक्रम का समापन। मुझे यानी अपनी रेडियो दोस्त वर्षा को दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ संध्या।

युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है 107.7 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पल में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। चौपाल 7:20 पर सुन सकेंगे, जिसमें आज के बाद का विषय रहेगा लाभदायक व्यवसाय मछली सह मुर्गी पालन। नसीहत में सुनेंगे कद्दू वर्गीय नार वर्गीय फसल ककोड़ा की खेती। गैर फिल्मी गीत होगा 8:20 पर। विविध संगीत रात 10 बजे सुन सकेंगे। 10:30 पर आपको सुनवाएंगे अनुरोध। कल सुबह 6:05 पर चिंतन सुन सकेंगे। 6:10 पर होगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कृषि चर्चा में सुनेंगे

0: 30 मिनट पर रामचरितमानस की संगीतमय प्रस्तुति सुबह 6:40 पर होगी। देशगान का समय रहेगा 6:50 का। चित्र पर संगीत 7:05 पर आपको सुनाएंगे। झरोखा के अंतर्गत आप सुनेंगे। सोशल मीडिया किसी व्यक्ति के जीवन का मुख्य आकर्षण है, यह यथार्थवादी नहीं है। समय रहेगा 7:35 का। लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे मांदा 7:45 पर प्रस्तुत करेंगे। समन्वित छत्तीसगढ़ी पत्रिका मोर भुइया आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से 8:30 पर अनुप्रसारित करेंगे। यहीं से अनुप्रसारित करेंगे 10:00 प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर की अगली कड़ी। फोन इन कार्यक्रम हेलो संगीत सुन सकेंगे 10:30 पर। कल शाम 5:00 प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट पेश करेंगे। झलकी प्रहसन का समय रहेगा 5:10 का। युवाड़ी लेकर आएंगे 5:30 पर, जिसमें आज की बात का विषय रहेगा लोकतंत्र का मंदिर संसद कैसे बदलती है देश की तकदीर। चर्चा में सुनेंगे तनाव को कहें बाय बाय जिंदगी जिए बिंदास, और सुन सकेंगे गैर फिल्मी गीत विकसित भारत की यही पहचान नशा मुक्त हो हमारा युवा और हर इंसान। चर्चा में सुनेंगे आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 का सीधा प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रिले करेंगे 6:30 7:50 और रात 9:00। पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादें 10:45 पर सुनिएगा। किसान वाड़ी होगा 7:20 पर, जिसमें आज के बाद का विषय रहेगा किसानों को आर्थिक सहायता प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। नसीहत में कम लागत में अधिक उत्पादन का आधार धान की सीधी बुआई।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
0: कार्यक्रम विवरण अभी आप सुन रहे थे 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। 6:10 होने वाले हैं। कुछ ही पल में आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
3: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग स्मिता शर्मा के जय जोहार। अब आप सुनो आज के प्रमुख समाचार। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के स्थापना के 5 पूरा होए के मौका में आज ले सहकारिता सप्ताह मनाए जावत है। आज कबीर जयंती हरय, ये मौका में प्रदेश भर में कतकुन कार्यक्रम करे जावत है। औ बस्तर के ऐतिहासिक औ विश्व प्रसिद्ध गोंचा महापर्व आज ले देव स्नान पूर्णिमा के संग शुरू। अब समाचार विस्तार ले। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के स्थापना के 5 पूरा होए के मौका में आज ले सहकारिता सप्ताह मनाए जावत है। 6 जुलाई तक चलैया ये सप्ताह में प्रदेश भर में कतकुन कार्यक्रम कराए जावत है। आज पहली दिन जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर में सहकारिता सप्ताह कार्यक्रम के आयोजन करेगी, जिमा सहकारिता मंत्री केदार कश्यप मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होइन। उमनहा छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक पंडित वामन राव बलिराम लाखे के प्रतिमा में माला चघा के अपन श्रद्धांजलि दिन। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित के अध्यक्ष केदारनाथ गुप्ता, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर के अध्यक्ष निरंजन सिन्हा और उपाध्यक्ष अभिनेश कश्यप मौजूद रहिन। उन्हें सहकारिता सप्ताह के तहत सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला के कतकोन प्राथमिक कृषि शाखा

0: सहकारी समिति मन में ध्वजारोहण कार्यक्रम कराएगी। साहसपुर समिति में राखे गए कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि अधिकारी और बड़े संख्या में किसान मन भाग लीन। कार्यक्रम के दौरान समिति के उपनियम के वाचन करके किसान मन ला उनकर अधिकारी और सहकारी प्रक्रिया की जानकारी घलो देगी। सहकारिता सप्ताह के अंतर्गत रायपुर में अवैया 3 और 4 जुलाई के राज्य स्तर सहकारी चिंतन शिविर, सहकार मेला और संगोष्ठी के आयोजन करे जाही, जेमा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होही। उन्हें 6 जुलाई के केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह अन्न भंडारण योजना के तहत प्रदेश के 9 पैक्स में गोदाम बनाए के काम के भूमि पूजन करही। आज कबीर जयंती हरा, ये मौका मा प्रदेश भर मा कतकोन कार्यक्रम करे जावत हे। रायपुर संघरा दूसर जगह मा घलो आज कबीरहा मनहा रैली निकालिन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा आज संत कबीरदास के जयंती के मौका मा रायपुर के सोनपैरी मा संत असंगदेव के साथ कबीर जयंती महोत्सव मा शामिल होइन। कार्यक्रम मा मुख्यमंत्री हा कहिन कि संत कबीरदास के आदर्श जाति पंथ ले ऊपर उठ के सामाजिक सद्भाव, आत्मचिंतन और लोक कल्याण के प्रेरणा देथे। ये मौका में श्री साय घोषणा करीन कि मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना के अवधि ला अवैया 3 महीना बर बढ़ाए जाही, जेखर ले ज्यादा उपभोक्ता सरचार्ज माफी और आकर्षक प्रावधान के लाभ लेके अपन लंबित बिजली बिल के भुगतान कर सकी। कार्यक्रम में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह मौजूद रहिन। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र पर कतकोन डिजिटल पहल के शुरुआत करिन। एमा आरोग्य सेतु के दूसर चरण, आयुष्मान सारथी चैटबॉट, आयुष्मान ऐप, ई सुश्रुत क्लिनिक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा विनिमय और भारत के डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा ला मजबूत करे बर स्वास्थ्य मानक शामिल है। सभा में श्री नड्डा ये पहला सरकार डहा ले हासिल एक ठन बड़े उपलब्धि बताइन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE हा आज त्रिभाषा नीति के बारे में निर्देश जारी करिस। बोर्ड हा कहे है कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैचला नवा भाखा नीति के पालन नहीं करे बर पड़े। बोर्ड हा यहू कहे से कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं मा पढ़त लैका मनला घलो कक्षा 10वीं पहुंची के बाद तीसर भाखा मा बोर्ड परीक्षा दे के जरूरत नहीं होही। बोर्ड हा कहे है कि कक्षा के अनुसार संसाधन सामग्री दे के बेरा मा देवाए जाही। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में रूफटॉप सोलर लगैया उपभोक्ता मनला उपराहा बिजली के फायदा मिली। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी हा सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डहर ले तय करेगे बायबैक दर ला लागू करे के प्रक्रिया शुरू कर दे है। मंजूरी मिले के बाद ग्रिड में भेजे गए उपराहा सोलर बिजली के राशि उपभोक्ता मन के अवैया बिजली बिल में क्रेडिट के रूप में मिली। नेट मीटरिंग व्यवस्था ले उपराहा बिजली के हिसाब राखे जाही। छत्तीसगढ़ ही समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल मा घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमारे फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचा थन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: आओ अब आगु बढ़बो वाचे समाचार कोती। प्रदेश भर में आगजनी की घटना ले बांचे बर बहुमंजिला भवन, कोचिंग सेंटर और संस्थान में अग्निशमन और आपातकालीन सेवा के जांच ला तेज कर देगी है। एक अड़ी में दुर्ग जिला में अग्निशमन और आपातकालीन सेवा और SDRF की टीम 40 ले ज्यादा कोचिंग संस्थान के निरीक्षण करिन। ये दौरान कतकोन कोचिंग संस्थान में अग्निशमन यंत्र, अलार्म और आपातकालीन निकास व्यवस्था में कमी पाई गई है। जिला सेनानी नागेंद्र कुमार सिंह बताएं कि संबंधित संस्थान ला कमी ला दूर करे बर हफ्ता भर के समय देगी है। देगे बेरा मा सुधार नहीं होए मा कोचिंग सेंटर ला सील कर दे जाही। बस्तर के ऐतिहासिक और विश्व प्रसिद्ध गोंचा महापर्व आज ले देव स्नान पूर्णिमा के साथ शुरू हुआ थे। ये दौरान जगन्नाथ मंदिर मा भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा के वैदिक विधि ले महाभिषेक हो ही। एकर बाद अवैया 15 दिन तक भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा के मंदिर के कपाट बंद कर

0: चाहिए। सरगुजा जिला के रामगढ़ में आज ले दो दिन के रामगढ़ महोत्सव शुरू हो गए है। पर्यटन और संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल है ये महोत्सव के शुरुआत करें। उद्घाटन के मौका में स्कूली लड़का और स्थानीय कलाकार मन सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रस्तुति दिन। कार्यक्रम में श्री अग्रवाल है कहें कि रामगढ़ सिर्फ सरगुजा के नहीं फिर पूरा देश के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान के केंद्र हवे। राज्य सरकार है इला राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र में स्थापित करे बर सरलग प्रयास करत हे। डिजिटल माध्यम के जरिया छत्तीसगढ़ पर्यटन ला राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में पहचान दिवाए बर छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल डहार ले 26 ले 30 जून तक इन्फ्लुएंसर मीट और फैमिलियराइजेशन टूर के आयोजन करे जावत है। जेमा राज्य के आने आने जिला ले चुने प्रमुख सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मन छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थल के भ्रमण कराए जावत है। इस दौरान प्रतिभागी मन मैनपाट और सतरेंगा के भ्रमण करत है। रायपुर जिला के धरसीवा विकास खंड के ग्राम सम्मानपुर नकटी में आज राजस्व पुलिस और नगर निगम के अमला में कार्रवाई करत लगभग 9 हेक्टेयर शासकीय भूमि में बने 77 ठन अवैध मकान ला हटाएगी। अधिकारी मन बताएं कि ये सरकारी जमीन में बहुत बेरा ले अवैध कब्जा रहीस। प्रशासन डहार ले सबो कब्जाधारी मन ला नोटिस जारी करे गए रहीस। कार्रवाई के बाद सबो कब्जाधारी मन के व्यवस्थापन जिला प्रशासन डहार ले नवा रायपुर के सेक्टर 30 के आवास में करे जावत थे। अब पेश है मौसम के हाल। मौसम विभाग अवैया दो दिन तक बस्तर संभाग में एक दो जगह में मध्यम ले भारी वर्षा होए के चेतावनी दे है। अवैया 24 घंटा के दौरान सुकमा बीजापुर दंतेवाड़ा बस्तर और नारायणपुर जिला में गरज चमक के संग वर्षा होए के संभावना है। वहीं कुछ एक जगह में आकाशीय बिजली गिरे के चेतावनी दे गए हवे। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी आकाशवाणी समाचार ला बताएं कि अवैया 6 दिन तक प्रदेश में वर्षा की गतिविधि बढ़ी उन्हें उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ में बने वर्षा होए के आसार है। यही बीच कबीरधाम जिला के बरकोही बांध तीर आकाशीय बिजली गिरे ले एक जन किसान के मौत हो गई। वर्षा ले माचे बर ओहा पेड़ के नीचे खड़े हो गए रहीस। अब थोरकुन समाचार सार मा। बलरामपुर जिला के राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कोटा गहना में सोवत खानी सांप काटे ले एक झन्नोनी और सियान माई लोगिन के मौत हो गए। कोरबा जिला के कटघोरा वन मंडल के जटगा वन परिक्षेत्र के धवलपुर जंगल में हाथी के हमला ले एक जन ग्रामीण के मौत हो गई। और मुंगेली जिला में जरहा गांव पुलिस ऑपरेशन बाज के तहत गांजा के अवैध खेती करे के मामला में एक जन आरोपी ला गिरफ्तार करे है। पुलिस आरोपी के कब्जा ले लगभग 3.5 किलो वजन के गांजा के 3 ठन पौधा घलो जब्त करे है। आखिर में प्रमुख समाचार एक गांव फिर। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के स्थापना के 5 बच्छर पूरा होए के मौका में आज ले सहकारिता सप्ताह मनाए जावत है। आज कबीर जयंती है रे मौका में प्रदेश भर में कतकुन कार्यक्रम करे जावत थे। और बस्तर के ऐतिहासिक और विश्व प्रसिद्ध गोंचा महापर्व आज ले देव स्नान पूर्णिमा के संग शुरू। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यह सिरावत है। जय जोहार।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र के माध्यम से। 6:20 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। अनिल बख्श के लिखे गीत को अपनी आवाज दी है मोहम्मद रफी ने। फिल्म है मर्यादा। संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

0: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
2: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
2: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।

0: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
2: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
0: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: संदेश से पहले आप सुन रहे थे खोए खोए रहे तेरे राह में। किशोर कुमार और अनुराधा पौडवाल को फिल्म कलाकार के इस गाने में, जिसे लिखा था इंदिवर ने, संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं जावेद अख्तर की रचना को, संगीत में प्रिया है राहुल देव बर्मन ने, आवाजें आशा भोसले और शैलेंद्र की हैं। फिल्म का नाम है सागर।

हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती।
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती।
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता।
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत।
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट।
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल। बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले।
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग।
3: सखी सहेली।
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे।
1: हम क्या कहें, आपको याद सब है जरा जरा।
5: मुझे याद सब है जरा जरा।
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन।
0: मन का सुकून, दिल की आरती,
1: सुरीली संदली।
6: संध्या से पहले आप सुन रहे थे रॉकी फिल्म के गाने को। लता मंगेशकर किशोर कुमार की युगल आवाजों में, संगीतकार थे राहुल देव बर्मन, गीतकार थे आनंद बख्शी। इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र के माध्यम से 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। 6:45 होने वाले हैं। कुछ पल में आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले करेंगे।

0: पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:45 हुए हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
2: बेटा,
3: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
2: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
4: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
2: चलो,
3: कहाँ
2: एडमिशन कराने?
4: खाता हुआ एक्टिव,
5: आरबीआई कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
8: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
7: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
8: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
7: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
8: क्यों?
7: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे

0: मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
4: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में बिजली बिल भुगतान समाधान योजना की अवधि 3 माह के लिए बढ़ाई जाएगी, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। कबीर जयंती के मौके पर सोनपैरी में आयोजित महोत्सव में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हुए शामिल। कोयला खदानों से निकलने वाले पानी को कोल इंडिया अब कोल नीर ब्रांड नाम से बाजार में बेचेगा। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बस्तर संभाग में एक दो स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घोषणा की कि बिजली बिल भुगतान समाधान योजना की अवधि 3 माह के लिए बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज रायपुर के पास सोनपैरी में आयोजित कबीर जयंती महोत्सव को संबोधित करते हुए ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे अधिक से अधिक उपभोक्ता सरचार्ज माफी और आकर्षक प्रावधानों का लाभ लेकर अपने लंबित बिजली बिलों का भुगतान कर सकेंगे।
6: बिजली बिल ज्यादा आया है उनके लिए एक मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना चला रहे हैं। अभी 31 जून तक उसका समय था, उसको आगे 3 महीना के लिए बढ़ा रहे हैं। तो जिनका भी बिजली बिल ज्यादा आया होगा पुराना कोरोना के समय से, तो आप लोग पंजीयन कराइए, तो आप लोगों का पूरा सरचार्ज माफ करेंगे और एक टाइम में आप मूलधन भी पटाते हैं तो उसमें भी 10% का रियायत है। तो हम लोग 757 करोड़ रुपया बिजली बिल माफ कर रहे हैं। तो किसी का भी अगर इस तरह से ज्यादा बिजली बिल होगा तो उस योजना का लाभ ले सकेंगे। 31 जून को फिर 3 महीना के लिए बढ़ा रहे हैं।
5: आज कबीर जयंती है, इस मौके पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राजधानी रायपुर सहित अन्य जगहों पर भी आज कबीर पंथ के लोगों ने रैलियां निकाली। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज संत कबीरदास की जयंती के अवसर पर रायपुर के सोनपैरी में आयोजित कबीर जयंती महोत्सव में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कर्नाटक के राज्यपाल श्री गहलोत ने कहा कि संत कबीर ने सत्य, समरसता, मानव सेवा और सद्भाव का जो संदेश दिया वो आज भी पूरे समाज और राष्ट्र के लिए पथ प्रदर्शक है। वहीं मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि संत कबीरदास के आदर्श जाति पंथ से ऊपर उठकर सामाजिक सद्भाव, आत्मचिंतन और लोक कल्याण की प्रेरणा देते हैं। कार्यक्रम को विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने भी संबोधित किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूरे होने पर आज से सहकारिता सप्ताह मनाया जा रहा है। 6 जुलाई तक चलने वाले इस सप्ताह के दौरान प्रदेश भर में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज पहले दिन जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर में सहकारिता सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री केदार कश्यप मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक पंडित वामनराव बलिराम लाखे की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित के अध्यक्ष केदारनाथ गुप्ता, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर के अध्यक्ष निरंजन सिन्हा और उपाध्यक्ष अभिनेश कश्यप मौजूद थे। वहीं सहकारिता सप्ताह

0: के तहत सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की विभिन्न प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किए गए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा दसवीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा सातवीं, आठवीं और नौवीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के विद्यार्थियों को भी कक्षा दसवीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। कोरबा जिले में कोयला खदानों से निकलने वाले पानी का उपयोग अब पेयजल के लिए किया जाएगा। कोल इंडिया लिमिटेड ने कोल नीर परियोजना के तहत खदानों के माइन वाटर को शुद्ध कर बोतलबंद पेयजल के रूप में उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। अधिकारियों ने बताया कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की 46 खदानों में लगभग 1280 लाख घन मीटर माइन वाटर उपलब्ध है। अब इस जल को अत्याधुनिक आरओ और जल शोधन तकनीक से शुद्ध कर कोल नीर ब्रांड नाम से बाजार में उतारा जाएगा। योजना के तहत 20 लीटर की बोतल मात्र 5 रुपए में उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। कोल इंडिया की चार प्रमुख कंपनियों बीसीसीएल, सीसीएल, एसईसीएल और एमसीएल में माइन वाटर बॉटलिंग प्लांट स्थापित किए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर लगाने वाले उपभोक्ताओं को अतिरिक्त बिजली का लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा तय बायबैक दर को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मंजूरी मिलने के बाद ग्रिड में भेजी गई अतिरिक्त सोलर बिजली की राशि उपभोक्ताओं के अगले बिजली बिलों में क्रेडिट के रूप में मिलेगी। नेट मीटरिंग व्यवस्था से अतिरिक्त बिजली का हिसाब रखा जाएगा। बस्तर गोंचा महापर्व आज जगदलपुर स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में देव स्नान, चंदन यात्रा, पूजा विधान के साथ शुरू हुआ। इस अवसर पर भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बालभद्र का पंचामृत, चंदन और इंद्रावती नदी के पवित्र जल से परंपरानुसार वैदिक मंत्रोच्चार के बीच महाभिषेक किया गया। इसके साथ ही भगवान का अंसर काल शुरू हो गया जो 14 जुलाई तक चलेगा। इस अवधि में श्रद्धालु भगवान के दर्शन नहीं कर पाएंगे। 25 जुलाई को एकादशी के साथ बस्तर गोंचा पर्व संपन्न होगा। सरगुजा जिले के रामगढ़ में आज से 2 दिवसीय रामगढ़ महोत्सव शुरू हो गया है। पर्यटन और संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने इस महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर स्कूली बच्चों और स्थानीय कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री अग्रवाल ने कहा कि रामगढ़ केवल सरगुजा ही नहीं बल्कि पूरे देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण केंद्र है। उन्होंने बताया कि महोत्सव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रदेश भर में आगजनी की घटना से बचाव के लिए बहुमंजिला भवनों, कोचिंग सेंटरों और संस्थानों में अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं की जांच तेज कर दी गई है। इसी कड़ी में दुर्ग जिले में अग्निशमन और आपातकालीन सेवा तथा SDRF की टीम ने 40 से अधिक कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान कई कोचिंग संस्थानों में अग्निशमन यंत्र, अलार्म और आपातकालीन निकास व्यवस्था को लेकर अनियमितता और कमियां पाई गई हैं। जिला सेनानी नागेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि संबंधित संस्थानों को कमियां दूर करने के लिए हफ्ते भर का समय दिया गया है। निर्धारित अवधि में सुधार नहीं होने पर कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया जाएगा। रायपुर जिले के धरसीवा विकास खंड के ग्राम सम्मानपुर नकटी में आज राजस्व, पुलिस और नगर निगम के अमले ने कार्रवाई करते हुए लगभग 9 हेक्टेयर शासकीय भूमि पर बने 77 अवैध मकानों को हटाया। अधिकारियों ने बताया कि इस शासकीय भूमि पर लंबे समय से अवैध कब्जा था। प्रशासन द्वारा सभी कब्जाधारियों को नोटिस जारी किए गए थे। कार्रवाई के बाद

0: सभी कब्जाधारियों का व्यवस्थापन जिला प्रशासन द्वारा नवा रायपुर के सेक्टर 30 स्थित आवासों में किया जा रहा है। डिजिटल माध्यमों के जरिए छत्तीसगढ़ पर्यटन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा 26 से 30 जून तक इन्फ्लुएंसर मीट और फेमिलराइजेशन टूर का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत राज्य के विभिन्न जिलों से चयनित प्रमुख सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराया जा रहा है। इस दौरान प्रतिभागी मैनपाट और सतरेंगा का भ्रमण कर रहे हैं, साथ ही रामगढ़ महोत्सव के माध्यम से प्रतिभागी छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं, लोक कलाओं और ऐतिहासिक विरासत से भी रूबरू हो रहे हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक बस्तर संभाग में एक दो स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जताई है। अगले 24 घंटों के दौरान सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और नारायणपुर जिले में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि अगले 6 दिनों तक प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी, वहीं उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश के आसार हैं। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कोटा गहना में सर्पदंश से एक बालिका और एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। कोरबा जिले के कटघोरा वनमंडल के जटगा वन परिक्षेत्र के धवलपुर जंगल में हाथी के हमले से ग्रामीण की मौत हो गई। और मुंगेली जिले में जरहागांव पुलिस ने ऑपरेशन बाज के तहत गांजे की अवैध खेती करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में बिजली बिल भुगतान समाधान योजना की अवधि 3 माह के लिए बढ़ाई जाएगी, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। कबीर जयंती के मौके पर सोनपैरी में आयोजित महोत्सव में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हुए शामिल। कोयला खदानों से निकलने वाले पानी को कोल इंडिया अब कोल नीर ब्रांड नाम से बाजार में बेचेगा। और मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक बस्तर संभाग में एक दो स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जताई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: FM 107 MHz पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। 7 बजे हैं। अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कटी पतंग फिल्म के गाने को लीजिए सुनिए। किशोर कुमार की आवाज में राहुल देव बर्मन ने धुन बनाई है। आनंद बख्शी के बोल हैं।

अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: संदेश से पहले आप सुन रहे थे चलते चलते फिल्म के गाने को सुलक्षणा पंडित और बप्पी लहरी की आवाजों में। धुन बनाए थे बप्पी लहरी ने ही, अमित खन्ना के शब्द थे। कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं आनंद बख्शी के लिखे गीत को, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत दिया है, सुर है मोहम्मद रफी के, फिल्म का नाम है गोरा और काला।

प्यार का सागर फिल्म के गाने को आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी आशा भोसले की युगल आवाजों में। प्रेम धवन ने गीत लिखा था, रवि ने धुन बनाई थी। इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त तो होता है। FM 100.7 MHz पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। 7:20 हुए हैं, आइए सुनते हैं किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल।

0: संगवारी हो चौपाल के बैठकी माँ आप मन के संगवारी रामविलास पटेल की राम राम जय जुहार। संगवारी हो देखा बादर गरजत है कई जगह माँ बरसत भी है और हमला खेती किसानी के काम ला अब करना पड़ी कसना पड़ी कमर लाओ आगू बढ़ना पड़ी। संगी हो देखा आज के हमर क्रम में कई ठन जीनी सावे शामिल तो आज हम सब ने शुरू करत हन भेंटवार्ता ले। भेंटवार्ता में ग्राम जनकपुर विकासखंड बरम किला कृषक हमें फिरोज नायक एवं से वैसे कि क्षेत्र के अनुसार से पशुपालक उत्तम नस्ल के गाय पाल के कैसे दुग्ध उत्पादन बढ़ाई ये विषय में मोर बातचीत हुई से आवा सुनी भेंटवार्ता ला। संगवारी हो राम राम जय जोहार। किसान भेंटवार्ता के अंश में ऐसे किसान हमारे बीच में उपस्थित हैं जोन मन युवा हावे और युवा होए के संगे संग एमन गोरस व्यवसाय से जुड़ी है। गोरस व्यवसाय में एमन एक विशेष कंपनी में एक मार्केटिंग के काम भी देखते हैं संग में इमन के पूर्वज से जो है दुग्ध उत्पादन के काम से इमन के पूरा परिवार लगे है तो ऐसे कृषक हमारे बीच उपस्थित है। सबले पहले तो किसान भाई राम राम जय जोहार।
1: जय जोहार सब किसान साथियों हो
0: आप मन के परिचय बताइए।
1: मोर नाम है फिरोज नायक। अच्छा। मैं रहने वाला हूँ जनकपुर
0: जी
1: ब्लॉक है बरम किला।
0: हाँ तो फिरोज नायक जी उम्र कितना हो गया आप मन के?
1: उम्र तो उम्र हो गए लगभग 32-33 साल हो गए।
0: अच्छा और गोरस व्यवसाय के काम ला कब ले कर रहे?
1: गोरस व्यवसाय के काम ला तो लगभग पहले ले ही चलते ही चले बर।
0: हाँ हाँ
1: बाकी अभी जो है हमर हाथ में अभी हम स्वयं करत हम समझा।
0: अच्छा अच्छा
1: स्वयं करत हम तीमे समझा अभी 7-8 गैया रखे हम।
0: हाँ,
1: जिनमें के गैया की नस्ल है जर्सी एचएफ
0: हम्म।
1: जो हमर लोकल वातावरण के जो
0: हिसाब से जो चलते हैं है। या अपन आपला वातावरण अनुकूलित करते हैं जो मन सक्सेस हैं तो जैसे जर्सी एचएफ और ये जो आप मन कहा था ये नस्ल मन के क्या विशेषता है?
1: नस्ल मन की विशेषता तो यह है कि जैसे देसी ब्रीड है तो देसी ब्रीड में दूध का उत्पादन उतना नहीं है। हालांकि दूध के मोटापा और दूध की क्वालिटी जो है देसी नस्ल में है। बाकी जो है जैसे बिजनेस पर्पज से जैसे अगर देखा जाए तो एचएफ जर्सी ये मन जो है दूध के क्वांटिटी जो है ज्यादा मिलते।
0: अच्छा।
1: एक बार समझाई में फायदा मिला था।

0: समझा।
1: अच्छा, मतलब बिजनेस पर्पस से देखा जाए तो ये नस्ल मन के काफी लोकप्रियता है। और इमन गाभिन कैसे होते हैं और इमन के दुग्ध उत्पादन कैसे रही थे और कतका अंतराल में गाभिन होते हैं या कतका बेरा तक दूध देते हैं, ऐसे कुछ अगर खास बात है।
0: गाभिन तो साल भर में लगभग एक ठो बच्चा या एक ठो बच्चा तो देना ही देना है नहीं? और हो सकते कुछ देर सबेर होते तो 2-4 महीना और एक्स्ट्रा जाते समझा। और जैसे कृमि उर्मि के जो है बराबर दवाई वही जैसे देते रहे ना तो गाय गाभिन टाइम में समझा हीट वगैरह आते।
1: अच्छा,
0: टाइम में गाभिन वगैरह हो जाते समझे।
1: तो आप मैंने जैसे कृमि होते एक तो बाहर वाला होते एक भीतर वाला होते, तो एक कंट्रोल पर कैसे करता, कतका दिन के अंतराल में यूज करता, का करता, गोली खिलाता, इंजेक्शन लगवाता, पिलाता, का करता?
0: एक तो समझा हर 3 महीना में एक बार के होते समझा, और अंदर वाला हम खिलाता समझा।
1: अच्छा,
0: जैसे कृमि के एलमेंडाजोल है, फेलमेंडाजोल है, इमन के इस्तेमाल करथन समझा। जैसे गाभिन नहीं है कहले ओकर बर एलमेंडाजोल है, और गाभिन है तेकर फेलमेंडाजोल है समझा।
1: अच्छा अच्छा, और जैसे आप मन कैसे जानता कि आप कृमि के दवा खिलाए पिलाए के लायक हुई न करके, कुछ पहचान आते आप मन के गरवा मन मा पशु मन मा?
0: पहचान तो में हर है कि जैसे या तो गोबर बास मार ही, या तो ज्यादा पतला गोबर कर ही, या जैसे मिट्टी उट्टी के रहते तो मिट्टी उट्टी खाए के प्रयास करते।
1: हाँ,
0: ये सब चीज के
1: और कुछ ये भी कहते हैं कि बाल भी झड़ते या?
0: बाल भी थोड़े से झड़ते समझा ऊपर में।
1: अच्छा, तो कृत्रिम गर्भाधान के में क्या महत्व है?
0: कृत्रिम गर्भाधान के तो महत्व ये हर है कि नस्ल जो है अपन हिसाब से समझा मिलत है में, है नहीं कि जैसे जर्सी लगाना है तो जर्सी मिल जाते है, और एचएफ जर्सी निकालना है हमारे वातावरण के हिसाब से तो उसके हिसाब से मिल जाते है।
1: तो कृत्रिम गर्भाधान में कैसे जानता कि पशु गाभिन मतलब गाभिन होए बर है, या वो गर्मी में ऐसे या हीट में ऐसे कैसे पहचान करता, और कतका बेरा में वाला इंजेक्शन लगवा था, बीजा डालवा था?
0: हीट तो आय के लक्षण हर की गैया मन में या तो डिस्चार्ज वगैरह होते है समझा, और उकर डिस्चार्ज जैसे हल्का फुल्का दिखाई ओकर लगभग की स्थिति में 12-18 घंटा के बीच में लगाना रहते है समझा।
1: अच्छा अच्छा,
0: जो न की अनुकूलन हीटिंग के हिसाब से लगभग रहते है समझा।
1: अच्छा अच्छा,
0: जैसे है हीट में आते तो दूध में कमी होते, बार बार पेशाब करते, चिल्लाते भी, तो इनमें कई ठे लक्षण है।
1: अच्छा, रंबाते चिल्लाते और गोरस उत्पादन भी इतनी होती होते?
0: हाँ, दूध के उत्पादन में भी कमी हो जाते एकदम अचानक से, एकदम क्वांटिटी कम हो जाते।
1: अच्छा,
0: हीट में वगैरह में रहते।
1: फिरोज ये बताया कि पशुपालन में विशेष तौर से प्रबंधन के बात करथन तो उमन के शरीर हर स्वस्थ रहे, मस्त रहे, एकर बर खनिज तत्व या विटामिन भी कहते हैं कि पशु मन खिलाना पिलाना चाहिए, क्या कहना है एकर बारे में, आप मन कैसे करता?
0: नहीं, वो तो खिलाना पिलाना तो चाहिए समझा। जैसे हरा चारा वगैरह में मक्का कटिंग वगैरह हो गए, नेपियर वगैरह हो गए, ये सब चीज के जैसे मिलत रहते तो उतना ज्यादा तो कैल्शियम मिलर खनिज ये सब चीज के तो उतना विशेष जरूरत नहीं पड़े।
1: हाँ,
0: जब हर चीज सही मिल जाते रहते तो, और जैसे टाइमिंग में तो हर चीज हर एक साथ तो व्यवस्थित नहीं हो पाए या नहीं हो पाए, नहीं मिल पाए, तो वो जगह में समझा अपन जैसे कैल्शियम है, मिलर मिक्सचर है, ये सब चीज मन के उपयोग कर सकत हो।
1: अच्छा अच्छा, तो आप मन कैसे करता?
0: हम बीच बीच में साल भर में 2 महीना 1 महीना 2 महीना गैपिंग मन में मिलर मिक्सचर वगैरह कैल्शियम वगैरह चलते है समझा। एक महीना अच्छा। मिलर मिक्सचर कंटिन्यू चलते तो 1 महीना कैल्शियम चल जाते।
1: अच्छा,
0: ऐसे टाइप से चलते 1 महीना 2 महीना गैपिंग पूरा छोड़ देते।
1: अच्छा अच्छा, समय के हिसाब से उकर प्रबंधन करत रहे था का? तो यानी डेले का है गोरस के रूप में उनके कैल्शियम निसर जाते, तो कैल्शियम तत्व के आपूर्ति हो करके
0: समझा कैल्शियम मिलर मिक्सचर ये सब चीज मन के।
1: अच्छा, तो गोरस बिक्री के प्रबंधन कैसे, व्यवस्था कैसे है?
0: गोरस बिक्री मन के तो प्रबंधन व्यवस्था तो अभी ठीक ठाक है। अभी जैसे तो मैं तो खुद एक प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी हूं समझा, तो वो जगह में अभी कुछ तो देवभोग सरकारी शासकीय डेयरी में भी चलत है।
1: अच्छा,
0: और कुछ जो है हम प्राइवेट डेयरी में भी चलत है।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो
1: और दोनों में आपन की बिक्री है?
0: हाँ, दोनों में हमन की बिक्री है।
1: अच्छा अच्छा, चलो बहुत बढ़िया बात है कि गोरस के व्यवसाय से जुड़े और इकर से लाभ भी होते कि आप मन के पास गोबर भी मिल जाते।
0: हाँ, गोबर खेत में डाले पर गोबर भी मिल जाते।
1: कैसे बदलाव कुछ आते देखे और मिलते, जैसे जो

0: किसान मन पशुपालन नहीं करें, गोबर नहीं डालें और आप मन जो डालते, तो आप मन के खेतों मन के खेत में अंतर देखे और मिलते कि नहीं मिले?
1: हाँ, अंतर तो देखे और मिलते समझा। जैसे हम उन खाद वाद डालथन तो हमारे पे जो धान वान की उपज है वो सब मन के थोड़े से उपज ज्यादा दिखते
0: और चमक भी रहते
1: और ग्रोथ भी थोड़े से ज्यादा करते, हाइट भी ज्यादा बढ़ते।
0: अच्छा अच्छा,
1: गोबर खाद वगैरह डालते
0: तो बहुत बढ़िया रहते, उनमें पोषक तत्व रहते, खेती जो है ऐसे होते। चलो फिरोज नायक जी, आप मन बहुत सुघर जानकारी साझा करे कर बहुत बहुत धन्यवाद है। राम राम, जय जोहार।
1: जय जोहार किसान साथियों, धन्यवाद।
2: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
3: ब्रो ये फटा है।
4: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
5: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
3: वाओ, नया नोट मिलेगा?
4: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
5: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
6: संगवारी हो, चिट्ठी मिलिस के क्रम ला जल्दी शुरू करत हैं और चिट्ठी मिलिस में आप सबों के स्वागत है। मैं हूँ आप मन के संगवारी रामविलास पटेल। संगी हो, ये पहला ईमेल आई से हमर डहर माँ महामाया चौक मेघापरा वर्तमान हैदराबाद ले राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल, टेकलाल पटेल। आप मन लिखा था 22 जून दिन सोमवार के संझा के बेरा ईमेल और पोस्ट कार्ड लेके आ रही से हमर संगवारी रामविलास पटेल, जे मैं भारी संख्या में चिट्ठी ईमेल ला शामिल करिस और हमारे चिट्ठी पत्री ला शामिल करिस। मन खुश हो गया, आनंद हो गया, बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। एकर अलावा लिखते हैं 23 जून के मंगलवार के हमर दादा कहिया भैया दिलीप चौधरी जी लेके आ रहे हैं फोन इन कार्यक्रम हैलो संगीला, ईयर भी बहुत बढ़िया लागिस, एकर बधाई, एकर प्रस्तुति पर बधाई कहते हैं। 24 जून के डिनेश्वरी यादव जी लेके आ रही ने लोक रंजनी बहुत ही सुघर रही से, यही दिन बाजे मांदर कार्यक्रम में मनमोहक गीत आकाशवाणी रायगढ़ डहाले सुने में मिलीस, एकर पर भी धन्यवाद कहते हैं। 25 जून के गुरुवार के हेलो संगवारी ला प्रस्तुत करी रामविलास पटेल जी, बहुत बढ़िया लागिस, ओहि में चल चल गा किसान बोए जाबो धान आषाढ़ आगे करके जो गीत रही से बहुत बढ़िया लागिस। 26 तारीख के डिनेश्वरी यादव के प्रस्तुति में लीजिए फिर सुनी ला सुन के बहुत बहुत अच्छा लागिस और एक बार झवा झवा बधाई और धन्यवाद कहते हैं। यही दिन हमारे लोकगीत ला लेके आ रही से बंसी भैया जी बहुत बढ़िया आनंद ले भरे शुरुआत करिस, लोकगीत जो रही से हरि के भजन ला करके रही से संतों कर ले वह ऐसे गीत के बोल रही से शैलजीत साहू के आवाज़ में बहुत ही बढ़िया लागिस सुघर प्रस्तुति पर, आप जम्मो झला शुभकामना और बधाई ऐसे कहते हैं। तो राम कुशल पटेल जी, आप मन की ईमेल पर भी बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम चिट्ठी मिलिस में आप सबों के स्वागत है, लिखा थे हमार नियमित श्रोता हमें एमन हमें अनूपपुर मध्य प्रदेश ले जय मंत्री केवट, एमन कहा थे आकाशवाणी रायगढ़ के कार्यक्रम बहुत ही लोकप्रिय हावे, श्रोता मन के फरमाइश हो या अन्य जो कार्यक्रम है किसानवाणी हो या चौपाल हो हम सब बोला सुनथन, बहुत बढ़िया जानकारी मिलते कार्यक्रम के माध्यम ले हमला बहुत अच्छा जानकारी मिलते, संग में हमन चिट्ठी मिलिस में लिखथन भी और हमार पत्र ईमेल ला भी शामिल करते हैं और यहाँ के कार्यक्रम के तारीफ करन तो बहुत अच्छा अच्छा कार्यक्रम होते, चाहे लोक रंजनी के बात करन या हेलो संगवारी हेलो संगी के बात करन या विशेष दिन में विशेष भेंटवार्ता, यही क्रम में संगवारी को कहते हैं 22 जून के अमन तीन अलग अलग विषय में भेंटवार्ता सुनन गाँव गाँव जाकर के किसान मन के अनुभव ला सुनाइन, बहुत ही अच्छा लगीस, प्रसन्नता महसूस होइस कहते हैं। कार्यक्रम ले बहुत बढ़िया हमला आनंद भी मिलते, संग में इतिहास ले जुड़े घटना से भी हमन वाकिफ होतन, संग में विशेष दिवस में जो विशेष महापुरुष के जयंती रहते पुण्यतिथि रहते एकर बारे में आप मन जानकारी देता, जीवन गाथा के बारे में बताता, मौसम जलवायु के बारे में बताता, बहुत बढ़िया लागते, कौन से क्षेत्र में कैसे फसल बोना चाहिए, कैसे खेती किसानी करना चाहिए, ये सब बोला आप मन बहुत ही बढ़िया तरीका से आप मन प्रस्तुत करता। कभू कभू हम लागते कि जो आप मन के डहर ले बोले गए शब्द ला चुरा लेथन करके, तो आप मन एकर से सीख सकत हमार जो बोली भाखा हवे अनूपपुर मध्य प्रदेश में हो सकत है अलग भाखा में गोठियात हुई, तो हमार यहाँ के जो चीज़ आप मन ला अच्छा लगत है इला आप मन ग्रहण करा। आकाशवाणी के सबो भाई बहनी मन के जो प्रस्तुति है बहुत ही बढ़िया हवे और सबो ले हमार परिचित हो गए हैं जैसे लागत है कहते हैं। रायगढ़ केंद्र के मुख्य कार्यक्रम जो YouTube में प्रसारित होते या YouTube में अपलोड किए जाते हैं वाला हमन बार बार सुनथन और ये सबो बर बधाई कहते हैं और सहायक प्रस्तुति YouTube मास्टरमाइंड कहते हैं श्री रामविलास पटेल जी ला बधाई शुभकामना कहते हैं। तो दीदी ये आप मन के सबो के श्रोता संगवारी मन के प्रयास आवे जो माया आवे जो हमला कार्यक्रम ला बहुत बढ़िया प्रस्तुत करे बर उत्साहित करते प्रेरित करते और आप मन जो कहा था कि हमन जो प्रयास करते हैं वह आप मन ला अच्छा लागते, तो एकर से हमला अच्छा लागते अच्छा उत्साह बढ़ते हैं हमर कि हमार ऐसे ही कार्यक्रम आप मन पर हमेशा लेके आवन और यूट्यूब में भी अपलोड करन। आप मन दीदी अनुपुर।

प्रदेश ले जय मंत्री के बठावा आप मन लिखा एकर पर आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद। चिट्ठी मिलिस के क्रम में लिखा थे राम राम जय जुहार। 17 तारीख की जो लोक रंजनी कार्यक्रम आ रही से ओला लेके आ रही से दीपक नेगी साहब। 18 तारीख के जो हेलो संगवारी रही से रामविलास पटेल जी प्रस्तुत करें बहुत बढ़िया लागिस कहा थे। 19 तारीख के कार्यक्रम के संचालन करें स्वतंत्र महन जी। हमर लोकगीत के यार भी बढ़िया लागिस मीट लागिस। 23 तारीख के दिलीप चौधरी साहब के स्वर में सुनेन हेलो संगी कार्यक्रम और 24 जून के सुनेन हमन डिडनेश्वरी यादव के स्वर में लोक रंजनी बहुत ही बढ़िया लागिस। 25/6/2026 के सुनेन जो कार्यक्रम रही से संगवारी को कहा थे हेलो संगवारी ला एला प्रस्तुत करें श्रीमान रामविलास पटेल साहब जी। सबो कार्यक्रम मन मोहक मन भावन और अति सुंदर लागिस कहा थे। अला लिखा थे वार्ड नंबर 3 संजय मैदान राम भाटा रायगढ़ ले रोहित जयलक्ष्मी ऋषभ अंश लक्ष्मी और यमन के संग महावे जय लक्ष्मी। तो संगवारी आप मन रायगढ़ रामभाटा से आवा और आप मन लिखे है कि 17, 18, 19, 23, 24, 25 और सबो दिन के जो कार्यक्रम है और बहुत अच्छा लगी। तो आप मन जेकर जेकर भी नाम ले है कार्यक्रम के माध्यम से ओ मन तक आप मन के शुभकामना बधाई हर पहुँचा थे। तो संगी आप मन ईमेल लिखा एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। 23 जून 2026 के हेलो संगीला सुनैन दिलीप साहेब जी बहुत बढ़िया लागिस। काबर कि काबर नशा मुक्त अभियान से जुड़े विषय रही से और ओकर बारे में बातचीत करें नशा से बाँचे के अपील करें। काबर संगवारी हो नशा मुक्त भारत अभियान सप्ताह भी चलत रही से तो एकर सेती भी हमारे प्रयास रहते जैसने दिन में वैसने कार्यक्रम हमन लेके आवन। वही प्रयास में हमारे दिलीप चौधरी भाईदाहर ये कार्यक्रम ला प्रस्तुत करे से और वह आप मतलब बढ़िया लागिस एकर बार धन्यवाद। 24 जून के लोक रंजनी ने सुनैन डिडनेश्वरी यादव जी बहुत बढ़िया लागिस। गीत गोविंद सुनैन और बहुत अच्छा लागिस एकर पर जोहार दीदी कहते हैं। तो कार्यक्रम के माध्यम से डिडनेश्वरी यादव तक आप मन के जोहार पहुंचा थे। 25 जून के हेलो संगवारी सुनैन सुपर स्टार रामविलास साहब जी बड़ा नीक लागिस कहते हैं। संगवारी हो आप मन स्टार हवा आप मन की ईमेल आप मन के पत्र ले ही हमन कार्यक्रम ला सुपर अच्छा बना सकथन मस्त बनाथन बढ़िया बनाथन और आप मन ला नीक लागते। तो आप मन भी सुपर स्टार श्रोता हवा। ये श्रोता हमें गाँव गणेश धाम परसोली पोस्ट खीरथा बाजार ले जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलाऊ दास जयदास देवेश दास धनवंतीन भाई और मोतीम भाई मानिकपुरी एवं आगू लिखत हैं। 26 जून के स्वतंत्र साहब जी बहुत बढ़िया गीत सुनैन कबीर भजन सुनैन मन ल सुकून और शांति दिस कहते हैं एकर बार धन्यवाद। तो गांव गणेश धाम परसोली के हमारे श्रोता हमें जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलाऊ दास जयदास देवेश दास धनवंतीन भाई और मोतीम भाई मानिकपुरी आप जमो झल्ला ये सुघर ईमेल बार अंतसले धन्यवाद। आगू लिखा थे 24 जून के हमला बहुत अच्छा लगी इस लोक रंजनी कार्यक्रम ला और ये लिखा थे कर ही बदले पुरुषोत्तम निर्मलकर चंद्रिका निर्मलकर गीतिका और गुड्डी एवं कहा थे कि डिडनेश्वरी यादव जी के मधुर आवाज में कार्यक्रम ला सुनैन लोक रंजनी ला खुशनुमा बना दिन और अच्छा अच्छा सुगर सुगर गीत ला सुनैन और संचालन पर यादव दीदी ला दिल से धन्यवाद शुभकामना। तो कार्यक्रम के माध्यम से पहुँचा थे हमार डिडनेश्वरी यादव तक पुरुषोत्तम निर्मलकर भाई जी आप मन के ये ईमेल के माध्यम से कार्यक्रम के माध्यम से पहुँचा थे। 25 जून के हेलो संगवारी लेके आ रहे हैं परम मित्र रामविलास पटेल जी जेमन के मीठ संवाद ले कार्यक्रम हेलो संगवारी सुने में आनंद आगिस बेहतरीन मनमोहक और सफल प्रस्तुति पर पटेल जिला सहृदय धन्यवाद। तो सहृदय धन्यवाद संगवारी हमार कार्यक्रम आप मतलब सुगर लागते मीट लागते नीक लागते हमन ऐसे ही मीट और नीक लागे वाला कार्यक्रम प्रस्तुत करते रहन और करबो भी और आप मतलब अच्छा लागते यार जान के हमला और अच्छा लागते कि हमार प्रयास और आप मतलब अच्छा लागत है। 26 जून के हमर लोकगीत लेके आ रही ने स्वतंत्र महन जी बहुत ही समसामायिक खेती किसानी के गीत ले सुनैन हाँ वो हमार नाम ल शामिल करें एक बार धन्यवाद महन जी ला कहा थे और पूरा आकाशवाणी टीम ल सफल प्रस्तुति पर धन्यवाद। तो संगवारी आपो मन ला एक बार धन्यवाद ये श्रोता रही ने पुरुषोत्तम निर्मलकर और चंद्रिका निर्मलकर गीतिका गुड्डी ये मन कर ही बदल ले। तो संगवारी चिट्ठी मिलिस के क्रम ला यही विराम देबो आज के चिट्ठी मिलिस के क्रम में हमार संग में जतका भी श्रोता संगवारी मन जुड़ाओ और ईमेल कराओ एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। तो संगवारी अब लोकगीत सुनथेन कहात रहें और लोकगीत कैसे सुनबो संगवारी विदुषी ममता चंद्राकर के स्वर में सुनबो तोर मन कैसे लागे राजा आवा सुनी ये सुघर गीत ला।

तो संगवारियों कैसे लागे राजा महल भीतरी माँ विदुषी ममता चंद्राकर के स्वर में गीत ल सुनेन। अब बहुते दिन बाद ये गीत ल सुने पर मिलीस, अब बड़ आनंद आए हुई आपो मल्ला कार्यक्रम में जरूर साझा करिए कैसे लागिस तेला। अब देखा भैया हो आज के बाद के डहार जाबो तो लाभदायक व्यवसाय मछली सह मुर्गी पालन। अब एक संग में दूना कामला करना है जी, एक संग में ये काम हर करबो तो कैसे लाभदायक हो सकते हैं। वैज्ञानिक मन कहते हैं ला एकीकृत कृषि प्रणाली, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम भी कहते हैं। एकर से का होते संगवारियों, एक स्थान में हमन कम लागत में दो ठन व्यवसाय ला कर सकथन। जहां मुर्गी के जो मल रहे थे बीट रहे थे ओहर मछली के भोजन बन जाते, खाद के रूप में काम आते, एकर ले लागत कम हो जाते जी। और ये व्यवसाय हर काबर लाभदायक है, लाभदायक एकर बढ़ावे काबर की मछली के भी मांग है और मुर्गी के भी मांग है जी, दोनों के मांग है बराबर। तो एकर से का है हमला कैसे हमन कामला करबो तो बढ़िया हो ही। एकर पहली हमन एक दिन भेंटवार्ता भी सुना रहे घर घोड़ा बहिया मुड़ा के कृषक सोमराज सोम साहब पेकरा जी रोहि जो रहीन है ओमन के बातचीत लगे कि कैसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से ओमन लाभान्वित होकर के करत हैं। तो एकर संगे संग अगर हमन मुर्गी पालन भी करत हन तो बहुत ही लाभ के साधन बन सका थे, काबर कम लागत है। जैसे कि मैं आप मतलब पहली बताएं कि लो प्रोडक्शन कास्ट में लागते ओकर जो मुर्गी के बीट है मल मूत्र है वह तालाब में जाके पलवा के सवाल पैदा करते जोन हर की मछली के प्राकृतिक भोजन तैयार होते, एकर ले पूरक आहार और जो फीड देथन दाना देथन तेमा बचत हो जाते। मुर्गी के घर बनाए बर और ज़्यादा दरकार नहीं पड़े, वहीं तालाब के ऊपर माँ बनाया जा सकते, बनाना पड़ते जाली लगा करके, तो ये भी फायदा है। और

0: इनकम कैसे दोहरा लाभ है, एकर संग में क्या है संगवारी हो, मछली के भी बढ़वार हुई और मुर्गी के भी। मछली के आप मन बिक्री कर, मांस अंडा आप मन मुर्गी से प्राप्त करब, निरंतर आय हर बने रही। यानी कि आप मन काम ला करी है तो आय हर कभू रुके नहीं, जहन रुके संगवारी हो माँ। यानी कि ये काम में आय हर निरंतर बने रहते लगातार सतत रूप ले निरंतर रूप में। और एक प्रकार से देखा जाए अगर खाद और वहाँ पूरा नी भी गिर जाते तो बेहतर खाद यानी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के रूप में ओकर मुर्गी के बीट हर काम आते, जेमा नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम प्रचुर मात्रा में रही थी। एकर अलावा अगर बीट हर नीचे गिरते तो और तालाब की उर्वरता ला बढ़ाते। तो एकर पर आप मतलब क्या करना है, मुर्गी के घर ला बनाना है जी, शेड जो ला कहथन, शेड कंस्ट्रक्शन जो ला कहथन। एकर बर आप मन पानी के ऊपर में बांस या लकड़ी के खंभा या मचान बना सका था, यार बढ़िया आप मन के काम आ सकत है। और फर्श के बनावट में आप मन तार या जाली लगाई है तब वो नीचे मलमूत्र नीचे वो कर गिरी। एमा आप मन क्षमता देख लेना है कैसे हिसाब से करना है। सामान्यतः संगवारी हो एक एकड़ यानी 0.4 हेक्टर के तालाब में 200 से लेकर 250 मुर्गी पर्याप्त रही थे विशेषज्ञ मन कही थे जी। तो एला भी आप मन कर सका था। अगर मछली पालन करा था वो नीचे में तो करना ज पड़ी, अगर के बातें से नहीं है संचयन करना पड़ी, मछली बीजा डालना पड़ी, तो कतला और सिल्वर कार्प है ऊपर ऊपरी भाग में तैरते मन, और माझा में रोहू हर रही थे, और खाले भाग में कौन रहे थे कामन कार्प रही थे, जो उनकी मुर्गी के बीट रहे थे जो खलिया जाते तो ओला ओहर खाते। यानी सब स्तर के हमन वहाँ सदुपयोग करे बर ऐसे मछली पालन कर सकत हन। और अंडा देहे वाला आप मन मुर्गी के चयन कर सकत है, मांस बर बायलर के आप मन उपयोग कर सकत है। रख रखाव के कम खर्चा हुई एकर बर आप मन कड़कनाथ है वन राज है एला आप मन ले सकत है। तो ऐसे करिए तो बढ़िया रही और संग में ऑक्सीजन के कमी भी नहीं होए। बीच में अगर पानी अशुद्ध हो जाते, पीएच मान सही नहीं रहा थे, संतुलित नहीं रहा थे, तो चूना के प्रयोग करना पड़ी आप मला। मुर्गी मला टीकाकरण करवाना पड़ी, रानी खेत जोन होते संगवारी होकर बीमारी से बचाव और या गंबोरो जो बीमारी होते होकर बचाव और टीकाकरण लगते पशुपालन विभाग के डहाल ले। संग में ओमला सांप या कहना चाहिए चूहा जोन रहते मूसवा ये मतलब भी बचाव लागते, तो वो हिसाब से आप मतलब बनाना पड़ी। और ज़्यादा जानकारी बर आप मन कृषि विज्ञान केंद्र ले भी संपर्क कर सकत है, पशुपालन विभाग ले संपर्क कर सकत है, मछली पालन विभाग ले कर सकत है। और बढ़िया एकदम आप मतलब प्रायोगिक तौर से अगर जानकारी लेना है तो आप मन अपन लखठा के जो है संगवारी हो ऐसे जो मछली पालक है मुर्गी पालक है ओ मन से अगर मिलिया तो आप मतलब और अच्छा बढ़िया और सटीक जानकारी मिल पाई। तो संगियों ये तो इसे लाभदायक व्यवसाय मछली सह मुर्गी पालन के बारे में बातचीत। आवा संगवारियों सुनबो कि कैसे लाभदायक व्यवसाय पशुपालन में बन सका थन, खेती के समय दूध उत्पादन और प्रसंस्करण करके गांव बड़गांव विकासखंड तमनार के कृषक हमें कृपा राम मलाकार ये मन के गोट बात ला सुनबो। एकर बाद फिर लौट के आबो तो बढ़िया सुघर गीतला आप मतलब सुनाबो।
1: जय जोहार संगवारी हो, मैं स्वप्निल नामदेव हमारे आकाशवाणी परिवार के सार्थक प्रयास रथे कि हमन अपन अंचल के प्रगतिशील जो किसान किसानिन मन जो पशुपालन करत है खेती बाड़ी के बूता करत है ओमन करा जान ओमन के करा जाके खेती बाड़ी के काम बूता ला जानन ओमन कैसे काम बूता करत है। तो यही सिलसिला में हमन रायगढ़ के आगू गाँव आए हन। चला अब हमन बात करबो हमन संगवारी ले कि ओमन अभी खेती में का काम बूता करत है, का पशुधन रखी है, वो कैसे काम करते। तो राम राम भैया।
2: राम राम।
1: तुहर का नाम है?
2: कृपा राम मालाकर।
1: आउ अभी के वक्त बेरा में आप मन काका काम बूता कर रहा था?
2: हमन अभी तो धनिया उनिया नींदा थन।
1: अच्छा अच्छा।
2: ये गैया पाले हन।
1: अच्छा तो कौन गैया पाले है, कौन नस्ल के हावे है?
2: हमारा गिर है या देसी है।
1: अच्छा कद की ठीक रखे हो आप मन?
2: साहिवाल है।
1: अच्छा अच्छा। तो कद की ठीक आप मन गैया वैया रखे है अभी?
2: देसी उसी करके वो है 23-24 ठीक है।
1: अच्छा अच्छा। तो एकले आप मन दूध निकलते जो ओला अभी का करता?
2: हमन खोआ बनाथन।
1: अच्छा तो दूध भी बेचता की?
2: दूध भी दे देथन गांव में लेथन ते माल दे देथन।
1: अच्छा मतलब ज्यादातर आप मन खोआ बना के?
2: खोआ बना के बेचथन।
1: तो खोआ ला आप मन घरेच में बनाथन?
2: घर में बनाथन।
1: तो ओला कैसे बनाए जाते थोकुन हमन ला भी बतावा। रोज दिन दूध अपन दूधा दोनों टाइम दूधा की एक टाइम में?
2: दोनों टाइम दूध।
1: अच्छा अच्छा। तो अभी जो आप मन के गैया है वो हर कद की दूध देत हो?
2: वो 3 किलो 2.5 किलो 4 किलो के

0: आदर
1: अपन
0: देहिता
1: फिर
0: हो।
1: ओला बना के देता,
0: हाँ
1: मतलब
0: हाँ
1: बेचे बार रोज दिन अगर जाना चाहते तो ओला खोया
0: हाँ
1: अपन,
0: खोआ ले देथन,
1: तो
0: खोआ
1: खोआ
0: ले
1: ला अपन
0: लेके
1: कैसे रुपए किलो में देतो? हाँ
0: 350।
1: अच्छा, तो मन से घरेच ले आके आप मन के खोआ ले जाते कि आप
0: नहीं
1: मन
0: हमन लेके जाथन
1: तो
0: रायगढ़,
1: कहाँ?
0: रायगढ़ में जाथन पटेल।
1: अच्छा मतलब आप मन डेयरी में दे देता
0: हाँ
1: हो?
0: डेयरी में, डेयरी में हाँ विकास
1: हाँ,
0: डेयरी।
1: जैसे कोनो भी डेयरी है वहां आप मन एक संग, तो एक घर में जैसे आप मन कच्ची कच्ची खोआ बनाते हो?
0: ढाई किलो के हाँ
1: 2.5 किलो 3 किलो के आप मन खोआ
0: लेते
1: निकाल के फिर बेच देते हो?
0: हैं।
1: अच्छा, तो खोआ बनाए ले ज्यादा फायदा है कि दूध बेचता तो ज्यादा फायदा लगते?
0: दूध में ज्यादा फायदा है खोआ
1: अच्छा,
0: ले,
1: तो फिर भी आप मन खोआ बना था कबर की?
0: तो मैंने डेली जावे लगते दूध ला और
1: हाँ,
0: खोआ ला, एक हफ्ता में
1: एक
0: एक बार घर जहाज चल जाते।
1: हाँ ये भी बात है, मतलब सहूलियत होगी, सब
0: हाँ
1: आए जाए के जो पेट्रोल के खर्चा है वो भी
0: और
1: बात
0: भी
1: जाते
0: बात
1: होंगे।
0: जाते।
1: हाँ ये तो बहुत बढ़िया बात। तो ये जैसे कि पशुधन रखे है तो ओकर देखभाल कैसे करना पड़ते? काबर की गैया रखे है तो ओला नहलाना धुलाना भी पड़ते तय?
0: नहलाथन गरा बेसी तर के अमन खुल्ला छोड़ देथन,
1: तो ओमन चरते बुलते
0: चर बुल
1: पूरा,
0: के आते हैं तहां घर में खावा पिया के।
1: तो ओमन ला का
0: हमन
1: खाए बर देता?
0: दाना खिलाथन और पैराकुटी
1: अच्छा, और हरा चारा देता कि नहीं?
0: हरा चारा चर के आते हैं अपन मन
1: अच्छा, ओमन चर के जो
0: जहां।
1: आए रहते वो हरा
0: हाँ
1: चारा हावे, तो अपन एक घर में कतकी कतकी चारा दे थो? हाँ, कुछ 1 किलो 2 किलो ऐसा कुछ हिसाब ले देता कि
0: नहीं अंताजन हमन तो कोटना में भर देथन,
1: ओमन खात रहते?
0: ओमन खात रहते।
1: और जैसे गर्मी के दिन आते तो ओमन ला गर्मी नहीं लगे ओकर बार का व्यवस्था करता फिर?
0: उसने व्यवस्था पंखा उंखा लगा देता,
1: और ठंड के दिन में फिर?
0: ठंड के दिन में वो ये घेर दे हैं साड़ी ला
1: अच्छा, मतलब
0: हवा
1: हवा आर पार ना हो सके?
0: हवा
1: अच्छा, और गरवा कोठा में रोज दिन साफ सफाई करेला लगते धोए भर की?
0: रोड डेली नहीं धोन, 4 दिन 5 दिन में धोथन।
1: अच्छा,
0: ताऊ खातू लोकर फेंथन ना सर,
1: और जैसे
0: रोज
1: गोबर निकला थे ओला फिर आप मन का करता?
0: हमन डोली खेते धान में लगाथन,
1: अच्छा
0: इधे
1: अच्छा
0: कोचई लगा थनों में लगा थन, धनिया लगा थनों में लगा थन।
1: तो एला आप मन ऐसे गोबर ला बना की गोबर के खाद ला बना के फिर ओला डालता खेत डोली में?
0: नहीं, गोबर के खाद ला और सड़ते
1: हाँ,
0: ओकर बाद में फिर ओला
1: ओकर बाद
0: बना थन
1: उपयोग करता,
0: भुरभुरा
1: मतलब
0: करके।
1: हाँ
0: हाँ
1: भुरभुरा करके, ऐसे गिल्ला गोबर ला नहीं डाला
0: नहीं
1: था?
0: गीला गोबर नहीं डाला।
1: अच्छा, मतलब हमन कह सकत हन कि पशुधन आपन रखे है तो ओकर पूरा उपयोग हो जाते और
0: हाँ
1: सेवा भी हो जाते
0: सेवा भी हो
1: आप?
0: जाते, दोनों हो जाते।
1: हाँ, तो हमन ला पशुधन के बारे में इतना बढ़िया जानकारी दे हा, आपन कैसे प्रसंस्करण करा था और फायदा कमा था, ये बहुत बढ़िया जानकारी हवे। हमन ला इतनी सुघर आपन जो जानकारी दे हा तेकर बर अब्बड़ कन धन्यवाद है भैया। राम राम, जय जोहार।
0: जोहार।
2: तो संगवारी हो देखा बढ़िया, अभी भेंटवार्ता ला सुनेन कहा। अब भेंटवार्ता के बाद कहत रहें चर्चा ला करथेन, का कहत रहें चर्चा ला कर लेथेन। चलो एक ठन गीत ला सुनथेन जी, बढ़िया कन के लोक गीत ला सुनिन, ओकर बाद चर्चा ला आगू बढ़ाबो।

तो संगवारी वो बढ़िया गीत अभी सुने सीमा कौशिक को संगवारी मन के गाय गीत रही से। और चलो संगवारी हो आगू बढ़ी और हमारे नसीहत के गोट में जाबो तो कद्दू नार वर्गी जो फसल हवे ककोड़ा खेक्सा की खेती संगवारी हो जो ला मीठा करेला भी कहा जाते बेहद ही लाभदायक और पौष्टिक और खाए में मजा आते स्वाद एकदम बढ़िया रहते एक पोषक मूल्य भी काफ़ी सुघर रहते अब बाजार में एक मांग हमेशा बने रहते और मांग के हिसाब से कर आपूर्ति नहीं हो एक बार संगवारी हो एक भाव भी बढ़िया रही थे और यार बहुवर्षीय पौधा हो इस बहुवर्षीय फसल देते यानी एक बार लगाई है तो कई साल तक अगर फसल देते रहते संगवारी वोकर जो समय आते थे में मर जाते कंधर वोकर फिर जमीन में स्थिर रहते वोकर बाद फिर जैसे आषाढ़ सावन आते पानी गिरते तो संगवारी फिर वह प्रस्फुटित होते यानी उत्पन्न होते और वोकर बाद फिर वह नार के रूप में बढ़ते तो हमार जलवायु और भूया के बात करते हैं और हमार क्षेत्र के बात करते हैं हमार क्षेत्र के मौसम के बात करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है वर्षा काल में अब कई जगह में निसर भी घिसना वोकर संगवारी हो आहारा देह के जरूरत रहते वोकर कहना चाहिए ढेखरा देना पड़ते संगवारी हो वर्षा काल में बहुत ही बढ़िया एकर उत्पादन लिए जा सकते और लेते हैं भी कई क्षेत्र में एकर बढ़िया खेती होते दो तीन प्रकार के होते संगवारी हो एक तो एकदम छोटे टाइप से होते मेझलन टाइप से होते और एक बड़े साइज के होते जैसे कि हमन वाला कहथन कि हाइब्रिड कहथन तो हाइब्रिड भी आते और देसी भी आते तो देसी के स्वाद है ज़्यादा बढ़िया रहते तो एकर अगर आप मन खेती करना चाहता तो दोमट माटी बढ़िया रहती पानी नहीं भरना चाहिए एक बार संगवारी पानी अगर भरीस तो कांदार का होते संगवारी जलक जाते जी तो एक बार आप मतलब पानी झन बढ़े झन भरे दोमट माटी बढ़िया रही थे और एक अगर बात करते हैं बुआई के तो जून से जुलाई के समय जो रहते उपयुक्त रहते बीच में आप मन बुआई कर सकता अगर कंध से करता तो फरवरी मार्च और जून के महीना में करना लाभप्रद रहते लेकिन कभी कभार का होते अगर नहीं कर पाते अगर वह दिख नहीं पाते पौधा अंकुरित होते उकर बाद निसरा थे उकर बाद दिखा थे तो वो स्थिति में अभी भी आप मन कर सकता लेकिन थोड़कन उकर फर जो है

0: अन्य जो पेड़ हावे पौधा हावे ओकर तुलना में थोड़कुन बाद में फलते और ज़्यादा समय तक फलते, बाद में शुरू होते फलना और बाद में वह निसरत रहते, तो ये भी होते। तो उन्नत किस्म में अगर बात करते हैं तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय आईजी के भी द्वारा भी कुछ किस्म विकसित किया गया से जिला भी आप मन ले सकते हैं। इंदिरा का कोड़ा वन है जेकर उन्नत किस्म है संगवारी हो, यार बात करते हैं तो बीमारी में कम लगती। अंबिका 12-12-1 है, एयर भी फल आकर्षक और मध्यम आकार के होते, तेला भी ले सका था। संग में अगर बात किए जाए तो नर और मादा दोनों के होना जरूरी है, लेकिन एकर एक अनुपात होना चाहिए। खेत में मादा पौधा और नर के बात करते हैं तो 10:1 होना चाहिए, 10 अगर मादा है तो 1 नर होना चाहिए और परागण की क्रिया पर और उपयुक्त रही थे। और एकर बात करते हैं तो बीज द्वारा अगर हम लगाथन तो वही साल फल नहीं दे पाए, 1-2-3 साल लाग जाते। अगर कंदा के द्वारा अगर हम खेती कराथन तो और संगवारियों का होते और फल जल्दी दे देते। तो ये काम ला कर सकता था आप मन, अगर आप मन के पास जो खेत में ज़्यादा अगर ऐसे पौधा है तो आप मन वाला एक स्थान से दूसरे स्थान हस्तांतरित कर सका था। ज़्यादातर यार अगर पार मेड़ में रहा थे तो ज़्यादा बढ़िया इनकम देते, काबर कि वहाँ बढ़िया वर ऊँचा में भी रहते, अगर वहाँ पानी खाद अगर हम देते तो बहुत बढ़िया उत्पादन होते। पोट्रे तकनीक से भी कोकोपीट डाल करके एला का किए जा सकते, नर्सरी भी उगाए जा सकते और बहुत अच्छा बात होती कि प्रति एकड़ अगर व्यावसायिक स्तर में खेती करना चाहतन तो 4-5 हज़ार कंदा के दरकार पड़ते। और कंद में 2-3 मीटर के दूरी में क्यारी या मेड़ बना के 5-7 सेंटीमीटर गहरा अगर जो ठौर हावे वहाँ अगर हम लगाते हैं तो बढ़िया एकर लाभ मिलते और एकर फल मन के बढ़वार पर एकर जो नार हावे एकर वृद्धि पर का करते हैं संगवारी, वो मचान बनाते हैं, मचान ढेखरा जो कहते हैं या बांस के जो ओकर रहते ओकर ढेखरा ला अगर देथन तो ओकर जखना बहुत ज़्यादा रहते तो वो में भी अच्छा फल थे। बांस के मचान बना सका था, तार के बना सका था, लेकिन बांस के जो प्राकृतिक रूप से रहते वो ज़्यादा लाभप्रद रहते। अगर आप मन के पास पौधा हावे या कंद हावे तो मैं जैविक खाद डालिए, केचुआ खाद डालिए, गोबर खाद डालिए, नीम के जो खली आते तेला डालिया, बीच बीच में जो संतुलित उर्वरक प्रबंधन कथन तेला डालिया और वर्षा नहीं होते ते बेरा में वर्षा डालिए, सिंचाई करिए तो बेहतरीन एकर से लाभ मिलते। और एमा ज़्यादातर जो है संगवारी हो यार 4-5 महीना तक बढ़िया फसल देते, तो ये मौसम में बढ़िया लाभ मिलते, 100-150 रुपये तक एकर कीमत रही थी। तो ऐसी स्थिति में आप मन ककोड़ा खेक्सा की खेती करके बढ़िया इनकम लाभ ले सका था और बहुत ही बढ़िया एयर खेती हावे, तो आप मन एक खेती ले जरूर कराओ। लेकिन संग में देखा बात करबो तो संगवारी हो खरीफ में धान की उन्नत किस्म है एवं के खरीदी और उपयोग में कैसे हमला सावधानी अपनाना चाहिए एकर बारे में वार्ता हावे और एकर बारे में वार्ताकार हावे आर एन साहू सेवानिवृत्त वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी पुसौर ले आओ सुनियो मन के वार्तालाप।
1: खरीफ बर प्रचलित धान के किस्म के बारे में बताना चाहतन, उमे ज्यादा जो प्रचलित किस्म है MTU 7029 धान के प्रजाति है जिला स्वर्णा के नाम से भी जानते हैं। यह हर 140 से 145 दिन के प्रजाति है, 55-60 क्विंटल प्रति हेक्टर उपज होते। बौना किस्म है मध्यम दाना के आकार होते, उच्च उपज क्षमता के कारण ज्यादा एला पसंद किए जाते। धान से चावल के रिकवरी 60% तक होते। MTU 1001 नाम के एक प्रजाति है, 130 से 135 दिन के उम्र है, 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टर उपज है। एकर दाना मोटा होते, अर्ध बौना किस्म है, पोहा मुर्रा पर एकर ज्यादा डिमांड होते। MTU 1010 नाम के एक प्रजाति है, 112 से 115 दिन एकर उम्र है, 40 से 42 क्विंटल प्रति हेक्टर उपज है। अर्ध बौना किस्म है, लंबा पतला दाना है, कम अवधि में ज्यादा फसल देने वाला किस्म है। MTU 1156 तरंगिनी नाम से एक प्रजाति है, 125 से 130 दिन की उम्र है, 60 से 62 क्विंटल प्रति हेक्टर उपज है। मोटा तना होने के कारण में गिरे की समस्या नहीं रहे और ब्लास्ट बर यह निरोधी प्रजाति है। MTU 1153 नाम से एक प्रजाति है, एला चंदा भी कथे, 115 से 120 दिन के उम्र है, 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टर उपज है। भूरा माहो लिप ब्लास्ट पर प्रतिरोधी जाति है, यह भी तना मोटा होने के कारण गिरे नहीं। स्वर्णा सबवन नाम से एक प्रजाति है, 140 से 145 दिन के उम्र है, 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टर उपज होते। बौना किस्म है, मध्यम दाना है, पानी में 15 से 17 दिन तक भी यदि डूबे रही तो भी यह सड़े नहीं मरे नहीं और इमें जो चावल के रिकवरी प्रतिशत है 66% तक होते। एला बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र पर ज्यादा अनुशंसित किए जाते। PKB HMT नाम से एक प्रजाति है, 130 से 135 दिन की उम्र है, 40 से 45

0: क्विंटल प्रति हेक्टर उपज होते हैं। पतला दाना है, अर्ध बौना किस्म है, चावल के मांग जो है बाजार में सबसे ज्यादा होते हैं। एकर ओकर बर एला बाजार में बेच करके अच्छा लाभ अर्जित किए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ धान 1919 नाम से एक प्रजाति है, 130 से 135 दिन की उम्र है, 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टर उपज है। दाना मध्यम पतला अधिकतम उत्पादन देवर यह प्रसिद्ध है। एमटीयू 1318 कालगुड़ी नाम से एक प्रजाति है, 140 से 145 दिन की उम्र है, 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टर उपज है। लंबी अवधि के होय के कारण एक उपज जो है ज्यादा है। भूरा माहो शीत राट और ब्लास्ट अवर निरोधी जाति है। तना मोटा होने के कारण यह गिरे नहीं। आईजी के भी R1 राजेश्वरी नाम से एक प्रजाति है, 120 से 125 दिन की उम्र है, 45 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टर उपज है। अर्ध बौना किस्म है, लंबा मोटा दाना है। लिप ब्लास्ट और भूरा धब्बा बर मध्यम निरोधी जाती है और गंगायु के बर पूर्ण निरोधी जाती है। छत्तीसगढ़ जिंक राइस 2 नाम से एक प्रजाति है, 130 से 135 दिन के उम्र है, 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टर उपज है। मोटा पतला दाना होते। जिंक तत्व के जो मात्रा है यह 22 से 25 ppm तक होते। ओकर बर एला पोषण चावल के रूप में उपयोग किया जा सका थे। हाई प्रोटीन वाला जो प्रजाति है उनमें CR310 और CR311 है। CR310 की उम्र जो है 125 दिन के है, 40 से 42 क्विंटल प्रति हेक्टर उपज है। इनमें प्रोटीन की मात्रा 10 से 3% होते हैं और जिंक के जो मात्रा है वह 15 ppm तक मिलते हैं। यह कटक से विकसित किस्म है। CR311 120 दिन की उम्र है, 40 क्विंटल से 42 क्विंटल लेकर उपज होते। यह लंबा मोटा दाना है। धान से चावल 65% तक रिकवरी होते। एकर ऊंचाई जो है 110 सेंटीमीटर तक है और प्रोटीन की मात्रा एकर चावल में 10% तक होते और जिंक की मात्रा जो है 20 ppm तक होते। शुगर फ्री धान या चावल के बारे में बताना चाहता हूं। संपदा नाम से एक प्रजाति है, 130 से 135 दिन की उम्र है, 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टर उपज होते। 2008 में विकसित किस्म है यह। इनमें बहुत ही कम रोग बीमारी लगते है। ब्लास्ट अब निरोधी जाती है। शीत राट और बैक्टीरियल लिप ब्लाइट पर भी निरोधी जाती है। एकर जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वह 51 तक होते। उकरे बरेला शुगर फ्री राइस कहे जाते। अभी तक जो बीज के बारे में बताएं वो बीज मन ला आप अपन जिला के सरकारी संस्था मन में पता करके आप खरीद सका था और अपन विकास खंड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय या बीज प्रक्रिया केंद्र में भी जाकर के खरीद सकते हैं। किसान मन से निवेदन है कि कोई भी अनाज दलहन तिलहन या साग सब्जी के बीज खरीदी तो केवल विश्वसनीय या पंजीकृत संस्था से खरीदे करें। बीज बिसाए के आगू पैकेट थैली बोरी ला अच्छी तरह से देख लें। कोई जगह से चिरा फटा दोबारा पैकिंग वाला झन रहे, ओरिजिनल सिलाई रहे, टैग और लेबल पर्ची ठीक से लगे रहे। लेबल पर्ची ला ध्यान से पढ़े। अंकुरण के प्रतिशत कतका है, उपचारित है या नहीं है, वैधता कतका दिन के है एला भी देखें। एक्सपायरी डेट हो ही तो ओला मत खरीदें। बीज संबंधी कोई भी मांग शिकायत है तो विकास खंड में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय और जिला में उप संचालक कृषि कार्यालय से संपर्क करके समाधान पाया जा सकत है।
1: तो संगवारी देखा कैसे वार्ता सुनत रहें, बतात रहने कि कैसे हमला खरीदी करना है, कैसे उन्नत किस्म आवे, किस्म के हिसाब से हमला चयन करना है। संघीय फसल और मृदा के लिए वरदान जय उर्वरक खेत बचाओ अभियान संगवारी भारत सरकार के राल चलाएगी से और शुरू किया गया इसे 1 जून ले। तो संगियो एकर मतलब ये हावे कि हमला खेत ला बचाना है तो एकर बर हमर जो खेती किसानी के तौर तरीका है तेमा बदलाव करना पड़ी। यूरिया डीपी के अंधाधुन उपयोग के कोती जो हमन सोचथन ओला कमती करना पड़ी। एकर बर संगियो हमर जो बायो फर्टिलाइजर होते ते मन के कोती ध्यान ला देना पड़ी और ऐसने में संगवारी हो जो बायो फर्टिलाइजर है ओकर हमला सुरक्षित और बढ़िया उपयोग करना पड़ी। एकर बर हमला काहे संगवारी हो जो बायो फर्टिलाइजर होते जैव उर्वरक होते ये रासायनिक तत्व नहीं रहे बल्कि यार सूक्ष्म जीव मन ला आकर्षित करते। सूक्ष्म जीव मन के समूह होते जो उनकी माटी और बीज जो संगवारी हो रहते एला अगर हम उपचारित करथन तो यार हवा में जो उपस्थित रहते पोषक तत्व एला आकर्षित करके पौधा ला पहुँचाते। जैसे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है संगवारी हो तो एकर जो भाग है इला सीधा पौधार ग्रहण नहीं कर पाए। एकर बर ओकर प्रक्रिया होते प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होते तो वो सब चीज़ होते तबे संभव होते। तो हमन ये कहना चाहते हैं संगवारी हो आप मल्ला कि जतका भी हमर ये जो जीनी से सूक्ष्म जीव है चाहे हमन एजेक्टोबैक्टर के बात करन PSB के बात करन एजो स्पेरेलियम के बात करन नील हरित सवाल के बात करन ये सब वो हमार माटी पर बहुत ही लाभकारी होते और एकर उपयोग करे के दरकार काबर पड़त है। आज हमला एकर दरकार पड़त है माटी के सेहत ला सुधारे बर। खेत बचाओ अभियान के भी मकसद वही हावे संगवारी हो कि माटी के सेहत ला सुधारना, माटी की उर्वरता ला बढ़ाना, माटी के जैविक संरचना में सुधार करना ताकि संगवारी हो

हमर माटी के हवा पानी सोखे के क्षमता हर बढ़े और फसल बढ़िया लाभ ल मिले। संग में लागत में भी कमी करना है। ज़्यादा अगर लागत कर देबो तो इनकम कम होगी, तो लागत ला हमन कैसे कम करबो? एकर बर जो हमन यूरिया है, सुपर फास्फेट है, एमन के ज़्यादा उपयोग करते हैं, खर्चा ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसने में पीएसबी कल्चर है, एमन के उपयोग करी, या राइजोबियम कल्चर है, एकर उपयोग कर सकत हैं। पैदावार में भी बढ़ोतरी होते संगवारी एमन के उपयोग करे ले। जो विशेषज्ञ मन है, वैज्ञानिक मन कहते हैं, वो मन ऐसे ही नहीं कहें संगवारी हो, मन जांच परख करके अनुसंधान करके कहते हैं, तो एकर से भी फायदा है। पौधा ला भी सुरक्षा होते, सूक्ष्म जीव पौधा के जड़ के आसपास रहते, एकर ले हानिकारक बैक्टीरिया जीवाणु जो है वहाँ जा नहीं पाए। और दीर्घकालिक लाभ भी होते, का लाभ होते दीर्घकालिक लाभ में कि यार हमेशा माटी ला एक प्रकार से उपजाऊ बनाए बर अपन प्रयत्न करत रहते, तो ये लंबा समय तक हमला लाभ देते, यानी भुइयाँ ला बढ़िया बनाए रखते। तो एक बार आप मन राइजोबियम है, एजेक्टोबैक्टर है, एजो स्पैरिलियम है, या पीएसबी कल्चर है, माइकोराइजा है, ब्लू ग्रीन एल्गी जोनला की हमन नील हरी सवाल कथन अजोला कथन ये हर है, तो ये मन के उपयोग करा बीज उपचार में, जड़ उपचार में, पौध उपचार में, मृदा उपचार में, ये नाना प्रकार के उपयोग हावे। तो ये मन के उपयोग करे बर आप मन ला आगू बढ़ना पड़ी, और संग में जैव उर्वरक के उपयोग में संगवारी हो, रासायनिक खाद और जो दवा है ओकर संग में मिलाना नहीं है, ज़्यादा धूप में भी एला रखना नहीं चाहिए, ज़्यादा एक्सपायरी डेट के जो रहते संगवारी वो एक्सपायरी डेट ख़त्म होए के बाद हमला भी उपयोग नहीं करना है, नहीं तो हमला ओकर वाजिब कहना चाहिए जो लाभ है ओहर नहीं मिल पाए। तो संगियों ये सब चीज ध्यान में रखा और खेत ल बचाए में अपन की योगदान ल देवा। चला संगवारी सुनी एक ठन बढ़िया एक ठन और सुघर एकन के लोकगीत ला।

तो संगवारी हो कैसे लागे जी गीत, बढ़िया लागे हो ही गीत हर। अब चला देखा अब झुमकी तरोई के बातचीत हुई से तो राधे कुटे पर तो लागते जी। तो हमार माई लोगन मन पहली का करत रहीन है, राधे कुटे पर चूल्हा के उपयोग ला करत रहीन है। लेकिन ये सब ले का होत रही से ओमन के फेफड़ा संबंधी समस्या होत रही से, धुआं हा निसरत रही से, गुंगवात रहे, फूके ब लागत रहे, ठोढ़ा ला खोजे रहत रहे ब लागे, और कई बार फूकन ओकर बाद भी वर्षा के दिन जैसने आए तो हर झन पूछे संगवारी हो सुलगे तक नहीं। तो ऐसने में संगवारी हो राहत देवर भारत सरकार डाले का किया गई से, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के महिला हावें परिवार हावें ओमन ला धुआं रहित रसोई दे बर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ला शुरू किया गई से। संगी हो यह क्रांतिकारी बदलाव परिवर्तन हावे और भारत सरकार के महत्वाकांक्षी योजना हावे। योजना के उद्देश्य जो पारंपरिक ईंधन रही से पहली लकड़ी रही से, कोयला रही से, कंडा गोबर के रही से, संगवारी जो गोबर करें पशु मन वर सूख जाए तो कंडा के रूप में बन जाते, गोबर रही से, उपला रही से और छेना भी रही से, ये मन के उपयोग करें रांधे कुटे में। तो संगी हो एकर से का हो धुआं हा निसरे जी, गुंगवात रहे, तो एकर से मुक्ति दिलाए बर ओमन के सुरक्षा करे बर समान जीवन जीवन यापन करें महिला वर्ग एकर बर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ला शुरू किया गिस। तो एकर से का है संगवारी हो जो पारंपरिक चूल्हा है ओकर से ओमला मुक्ति मिला थे और मिलिस भी है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार से एक चूल्हा ले निसरे वाला जो धुआं रही थे लगभग 400 सिगरेट के बराबर खतरनाक होते, ऐसा WHO की रिपोर्ट के अनुसार से बताया कि से। तो संगी हो एकर से महिला के देह में ओकर जो फेफड़ा रहते वहाँ संक्रमण हो जाते, अस्थमा के समस्या हो जाते, आँखी में अंधापन हो जाते, हृदय संबंधी गंभीर समस्या आ जाते। तो ये सब समस्या ला देखते हुए निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए जाते, BPL आर्थिक रूप से जो कमजोर परिवार हावे वो मतलब मुफ्त में LPG कनेक्शन और रिफिल कराए में सब्सिडी अनुदान दिए जाते। संगी हो उज्ज्वला 2.0 के अंतर्गत अतिरिक्त लाभ भी दिए जाते। योजना के दूसर चरण में जो है लाभार्थी ला पहली जो है भरे हुए सिलेंडर और हॉट प्लेट गैस चूल्हा भी बिल्कुल मुफ्त में दिए जाते। प्रवासी मजदूर मन पर भी गैस कनेक्शन की उपलब्धता होते, एकर पर आप मन जो गैस वितरण केंद्र है वहाँ से संपर्क कर सका था। एमआर DBT के माध्यम से प्रति सिलेंडर सब्सिडी राशि भी सीधा बैंक खाता में हस्तांतरित हो जाते और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत। तो एकर पर आधार आप मन के बैंक खाता में लिंक होना चाहिए, आवेदक महिला 18 ले अधिक के होना चाहिए, घर में कोई LPG कनेक्शन जन हो, SECC सूची 2011 के जो सामाजिक

जाति जनगणना और इस ओकर हिसाब से वो जो सूची है वहाँ नाम होना चाहिए, परिवार के बैंक खाता होना चाहिए, बीपीएल कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ये सब रही तो आप वहाँ से लाभ ले सकता है। एक बार गैस वितरण केंद्र से संपर्क करना पड़ी। संग में संगवारी वो वर्षा काल आते तो वर्षा काल आते बानी वर्षा होते तो हमार जीवरा तो एक तो राहत मिलते, चिलचिलाती धूप गर्मी रहते एक लिए तो देह जुड़ा थे, लेकिन संगो एक संगे संग हमार तीर्थ खार में हरियाली भी छाते, हरियाली भी छाते तो कई प्रकार के जो कंदरा माँ या गुफा माँ कहना चाहिए या मुसवा बिल है या बिल जो भी रही थे वहाँ रहने वाला जो जीव जंतु है तेमन बाहर निसरते हैं तो एमा सांप है, बिच्छी है या कन खजूरा जोन होते एमन जहरीला कीड़ा होते हैं तो ये मन के कारण से संगवारी हो जो चापते ना या काटते तो बहुत ज़्यादा समस्या के सामना करना पड़ते। एक बार संगवारी हो हमार थोर कुन लापरवाही भारी हो जाते तो ऐसने में बाहरी जो हमन विचरण करा थे घर परिवार से या आंगन में तो हमारा ध्यान रखना है, हमन लोग लेकर हमारे भी इला चेताना है, आस पास के साफ सफाई रखना है, कबाड़ या कबाड़ी के जो निपटारा करना है, जूता चप्पल देख ताक के पहनना है, अंधेरा माँ नहीं जाना है, टार्च लाइट के प्रयोग करना है। आज के कृषक प्रश्न मंच आवे संगवारी हो मछली संग मुर्गी पालन करेले का लाभ होते, मछली संग मुर्गी पालन करेले का लाभ होते आपन उत्तर ला लिख भेजिए। अब जाए के बिरा होते तो आप मन के संगवारी रामविलास पटेल देव विदा। राम राम, जय जुहार।

किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल अभी आप सुन रहे थे। हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र के माध्यम से 107.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात के 8:20 हुए हैं। पेश है एक गैर फिल्मी गीत जुबिन नौटियाल और पायल देव की आवाज में। सुनिए इस गाने को। पायल देव ने धुन बनाई है, रश्मि विराग ने इस गाने को लिखा है।

पलक मुच्छल और उत्कर्ष शर्मा को आप सुन रहे थे। इस गाने में गीत और संगीत सतीश त्रिपाठी के थे। FM 107.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। उदित नारायण अलका याग्निक को लीजिए सुनिए जीत फिल्म के इस गाने में। गीत के बोल हैं समीर के, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती।
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता।
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत।
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट।
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल। बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले।
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग।
3: सखी सहेली।
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे।
1: हम क्या कहें, आपको याद सब है जरा जरा।
5: मुझे याद सब है जरा जरा।
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन।
0: मन का सुकून, दिल की आरती,
1: सुरीली संदली।
6: संदेश से पहले आप सुन रहे थे होगी प्यार की जीत फिल्म के गाने को। सोनू निगम, अलका याग्निक की आवाजों में आनंद मिलन ने संगीत से सजाया था। शब्द रचना थे समीर केस के साथ ही। फिल्म संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है FM बैंड पर। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पल में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरलम के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सायन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्य शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्र

0: IIF में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस अतिरिक्त निवेश का उपयोग NIIF के अवसंरचना केंद्रित दूसरे कोष की स्थापना के लिए किया जाएगा। अवसंरचना कोष द्वितीय के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इससे परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और शहरी अवसंरचना तथा ई मोबिलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के अंतर्गत अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। ये विधेयक असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने, असामाजिक तत्वों की कड़ी सजा देने के उद्देश्य से पारित किया गया है। चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अधिनियम बनने के बाद इन विधेयकों को असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती से लागू किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में DRDO को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन DFP 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि DFP 2026 अनुसंधान और विकास, पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकी के तेजी से उत्पादन रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा।
1: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकताओं की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समृद्ध और विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब गांव समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित हों। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि गांव केवल लाभार्थी ही नहीं बल्कि विकास के प्रेरक शक्ति भी हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: Applications launch is going to play a very important role.
3: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
2: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर।
0: श्री नड्डा ने कहा कि देश भर में लगभग 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर नागरिकों के लिए प्राथमिक संपर्क केंद्र है जो पहले, दूसरे तथा तीसरे स्तर के स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक मजबूत सेतु का काम करते हैं। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के गुना जिले के अपने 4 दिन के दौरे के दौरान लगभग 350 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पर्यावरण, सिंचाई, रेलवे, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास से संबंधित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से दो दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजय

0: नगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से त्रिपुरा और नई दिल्ली के बीच की दूरी काफी कम हो गई है। उन्होंने बताया कि बेहतर संपर्क के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। आज अगरतला के राजकीय अतिथि गृह में समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबके विकास के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने आज दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी। इसे 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह नीति पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों, विशेष रूप से शून्य उत्सर्जन वाहनों पर केंद्रित है। हमारी संवाददाता सौम्य शरण की रिपोर्ट।
1: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि अगले 4 वर्षों में इस नीति पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं 8,000 करोड़ रुपए की लागत से 30,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन और अन्य अवसंरचनात्मक तैयारियां की जाएंगी,
2: जिसमें हमने खरीद पे प्रोत्साहन दिया है, स्क्रैपिंग पे प्रोत्साहन दिया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की छूट भी इस पॉलिसी में दी गई है।
1: वहीं 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस नीति से 2-पहिया, 3-पहिया, 4-पहिया वाहन और N1 ट्रक जैसी वाहन लाभान्वित होंगे। इससे परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और दिल्ली एक स्मार्ट सिटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना, उपकरण या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन कई खबरों का भी खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि भारत के पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने कहा कि खुदरा पेट्रोल दुकानों पर ऐसा कोई होर्डिंग नहीं लगाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा होर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के एक नए दौर की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान ने इस संबंध में बैठक का अनुरोध किया है और ये बातचीत दोहा में होगी। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है कि उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। दोहा में तकनीकी वार्ता की खबरों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच सीधी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। क्षेत्रीय संघर्ष के बाद से 28 फरवरी से दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क निलंबित था। देश में इस वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP पर आधारित औद्योगिक उत्पादन 5.1% की वृद्धि हुई। बीते अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन 4.9% की वृद्धि हुई थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 372 अंक घटकर 76,728 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 110 अंक कम होकर 23,946 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 14 पैसे कमजोर होकर ₹94.54 पर बंद हुआ।
0: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए स्थान पक्का कर लिया है। ICC ने पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
0: बेचारा
2: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
1: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक,
2: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
1: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
3: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर, सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
2: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ,
1: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
2: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।
4: लीजिए सुनिए दस्तक फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत तैयार किया है मदन मोहन ने।

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित

0: सोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: कार्यक्रम की अंतिम पेशकश जुर्माना फिल्म से, आवाज लता मंगेशकर की, संगीत आर डी बर्मन का बोल आनंद बख्शी के।

अभी आपने लता मंगेशकर को फिल्म जुर्माना में सुना। आपके लिए कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: साथियों, आज हम जिस फनकार के फन का जिक्र कर रहे हैं वो वर्सिटाइल आर्टिस्ट हैं, इसलिए हमारे लिए ये मुश्किल है कि हम उनकी किस खूबी का जिक्र करें और किसका ना करें। हम सोचते हैं क्यों ना उनसे आपकी सीधी बात करा दें।
1: नमस्कार जी, मेरी तारीफ मैं अपने मुंह से क्या करूं।
0: सुदेश भोसले आज के हमारे फनकार हैं और अब आप समझ ही गए होंगे हमारी मुश्किल क्या है। बहरहाल हम पहले सुनते हैं उनका गाया गाना, फिर सुनेंगे उनके बारे में उन्हीं की जबानी।

0: कहते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप, बारी बारी मालूम हुआ। जो भी आज मैं दिखता हूँ या जो भी करता हूँ, बिल्कुल उसके विरुद्ध था। बिल्कुल बचपन में मैं स्कूल भी जाता तो मालूम भी नहीं पड़ता था मैं स्कूल में क्लास में बैठा हूँ या नहीं। क्वाइट एकदम, किसी से बातचीत नहीं। फिर अब जो मैं आवाज़ें बनाता हूँ, जैसे खासतौर पे अमित जी की आवाज़, मैं बचपन में लता जी के गाने बिना वॉइस चेंज किए गा सकता था। मतलब वॉइस में आवाज़ मेरी लड़की जैसी थी, तो लोग मेरे फ्रेंड्स वगैरह काफ़ी चिढ़ाते थे कि भाई बिल्कुल वॉइस आवाज़ तुम्हारी एकदम लड़की की तरह। लेकिन एक बात ये थी कि मम्मी जो थी गायिका थी सुमन भोसले, मेरी नानी क्लासिकल सिंगर थी दुर्गाबाई शिरोडकर, आगरा घराने की क्लास। तो म्यूज़िक का माहौल तो बचपन से था, लेकिन कभी माता पिता ने ये नहीं सोचा था कि मैं भी गायक बनूंगा। लेकिन बचपन से बहुत सुना है और अच्छा गाना बहुत सुना है, और घर में ये लगा था कि मैं पेंटर बनूंगा, क्योंकि मेरे पिताजी आर्टिस्ट थे और मैं खुद बहुत अच्छा पेंटर हूँ, पोर्ट्रेट्स और लैंडस्केप बनाता हूँ। फैमिली में म्यूज़िक एंड पेंटिंग दोनों बचपन से हमने देखा है और उसके साथ हम बड़े हुए हैं। और मेरे पिताजी पेंटर थे और हम लोग फिल्मों की पब्लिसिटी करते थे, जैसे आप होर्डिंग्स और बैनर्स जो देखते हैं एनआर भोसले के नाम से हम लोग करते थे। और एट द एज ऑफ 1974 में मैंने पहले पोस्टर, मतलब पहला पोस्टर पेंट किया, वो था राजेश खन्ना हेमा मालिनी की फिल्म प्रेम नगर का। तो मुंबई में जितने भी बैनर्स लगे थे सारे मेरे हाथों से पेंटिंग हुए थे। उसके बाद मैंने कई साल 74 से 82 तक लगातार पेंटिंग किया पिताजी के साथ। उसके बाद मैंने जैसे प्रेम नगर के बाद जूली, स्वयंवर, स्वर्ग नर्क, श्रीमान श्रीमती, निशाना, काफ़ी फिल्में मराठी हिंदी फिल्मों के बैनर्स पेंट किए। तो मेरा पेंटिंग भी इतना अच्छा था कि मेरे पिताजी को ये लगा कि मैं यही बिजनेस आगे बढ़ाऊंगा।
1: एक मिनट सुदेश जी, आगे बढ़ने से पहले हम एक गाना सुन लें, फिर बातें भी होंगी।

0: क्योंकि गाने का शौक था और एक बचपन से ये मुझे एक ऊपर कुदरती एक देन थी कि आमतौर पे जब आदमी कोई अच्छा गाना सुनता है उसकी इच्छा होती है गाने की तो वो अपनी आवाज़ में गाता है, लेकिन बचपन से मुझे ये था कि अगर मैं हेमंत दा का गाना सुनूं तो हेमंत कुमार की जैसे ही गाने की अपने आप कोशिश होती, या सैगल साहब हो या सचिन दा हो या किशोर दा हो, तो ये फ़ायदा मुझे कॉलेज में हुआ। तो हर कॉलेज में जैसे कल्चरल ग्रुप होता है तो वहाँ मैं ज्वाइन हुआ, तो जब जब भी मौका मिले मैं एक एक दो दो लाइनें सब सिंगर्स की गाता था, तो उधर लोगों को अच्छा लगा कि एक आदमी कई आवाज़ों में गाता है। अब ये करते करते हुआ कि मिमिक्री, तो मतलब जैसे इमिटेशन तो चल ही रहा था, उस वक्त मुझे कॉलेज में पहली बार मतलब लोगों के सामने गाने का या ना पब्लिक परफॉर्मेंस का, मतलब कई साल मुझे एक कह सकते एक ट्रेनिंग जैसे मुझे मिल गई। गाना तो बचपन से शौक तो था लेकिन कभी किसी के सामने गाने की हिम्मत हुई नहीं। धीरे धीरे मतलब जैसे जैसे कॉलेज जाने लगा तो लोगों ने मतलब फ्रेंड्स ने थोड़ा इनक्रेज किया, तो उनके साथ धीरे धीरे हंसी मजाक में पहले जैसे दोस्तों में बैठ के गाना सुनाना शुरू किया तो उन्होंने पसंद किया, फिर जैसे हमारे ग्रुप का जो कॉलेज का जो ग्रुप था ऑर्केस्ट्रा, उसमें कभी मौका मिला तो एक हाथ दूसरे गाने गा लेता था मैं। बहुत साल पहले हमारे जहाँ रहता हूँ मैं, हमारे कॉलोनी में एवरी ईयर हम लोग सेलिब्रेट करते थे 26 जनवरी, तो वहाँ लोगों को तो पड़ोस पड़ोस वालों को पता था कि थोड़ा बहुत अच्छा गा लेता हूँ, तो उन्होंने एक दिन अचानक मुझे ऐसे बिना कहे मेरा नाम अनाउंस करके मुझे स्टेज पे खड़ा कर दिया मुझे, और बोले अभी सुदेश भोसले गाएंगे, और मुझे पता भी नहीं था। और जब मैंने देखा कि सामने इतने लोग थे तो मैं तो बिल्कुल घबरा गया था, लेकिन मैंने गाना शुरू कर दिया। वो गाना था दुश्मन का, किशोर दा का, वादा तेरा वादा।
1: हर सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, के खुशबू

0: वेद भारती के हमारे सभी श्रोता सुदेश भोसले जी को बहुत करीब से जानते हैं, है ना? अजी जानेंगे क्यों नहीं, अक्सर सुदेश जी अपने हिट प्रोग्राम्स के साथ विविध भारती पर मौजूद रहते हैं। उनके ऐसे ही एक आइटम की छोटी सी झलक यहां भी।
1: इधर तुम्हारा घर में, तुम्हारा सामने किसी ने फादर को और तुम देखते रह गए। अगर इस दुनिया से किसी को उठाने का था तो अपन को उठाने का था। अपन का इस दुनिया में कोई जरूरत नहीं, लेकिन इसका जरूरत है। दुनिया में लाखों लोग ऐसा मासूम एंथनी को चर्च के बाहर मरने के लिए छोड़ देता है। कौन पालता सा लवर इस बच्चा लोग को? ये पालता, ये मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास इसका कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं।
2: तो ये सीन था और बिल्कुल वो बच्चे एकदम हैरान हो गए। बिल्कुल दोबारा मुझसे वो करवाया, तब मुझे कहते ना कॉन्फिडेंस आ गया कि यस। उसके बाद मैंने उनके जो उस वक्त की सारी फिल्में थी, जैसे लावारिस, दीवार, या उसके बाद अमर अकबर एंथनी, अंधा कानून वगैरह, उनको मैंने लाके डायलॉग्स को लिखा, उनको बाय हार्ट किया। फिर एक एक एक एक जैसे मौके मिलते गए, मैं एक एक सीन लोगों के सामने करता गया। और उस वक्त बहुत पसंद किया लोगों ने, क्योंकि अमित जी बिल्कुल एकदम टॉप पर थे, मोस्ट पॉपुलर उस वक्त थे उनके, जब डॉन वगैरह फिल्में आई थी। और कोई मिमिक्री आर्टिस्ट उस वक्त अमित जी की नकल नहीं करता था, तो दैट्स वाई लोगों ने बहुत पसंद किया। तो मेरी भी मतलब हिम्मत बढ़ गई।

0: आज के फनकार कार्यक्रम जो केंद्रित था स्टेज की दुनिया के जाने माने कलाकार और पार्श्व गायक सुदेश भोसले पर।
1: आज के फनकार।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र के माध्यम से 107 मेगाहर्ट्ज पर, रात के 10 बजे हैं। अब सुनिए विविध संगीत का कार्यक्रम। विजेता पंडित और सोनू निगम की आवाजों में सुनिए इस गाने को। सुनील राज ने जिसे लिखा है, संगीत है विनोद भट्ट का।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं निशा भारद्वाज और आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष, वंदे मातरम। श्रोताओं, वंदे मातरम गीत भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अपनी एक गहरी और महत्वपूर्ण विरासत रखता है और आज इस विरासत के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसे में इस विषय पर हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं श्री हितेंद्र पटेल, जो कि रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता में इतिहास के प्रोफेसर हैं। नमस्कार हितेंद्र जी, आपसे जानना चाहते हैं कि वंदे मातरम गीत की रचना किस ऐतिहासिक संदर्भ में हुई थी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का क्या दृष्टिकोण था?
1: वंदे मातरम गीत जो है वो 1870 के दशक में लिखा गया था। शुरू में इसको संस्कृत में लिखा गया था, इसका दो स्टैंजा, और उसके बाद में इसको बढ़ाया गया, 6 स्टैंजा इसका किया गया, और 1882 में पहली बार इसको महत्वपूर्ण उपन्यास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ में शामिल किया गया है, जिस उपन्यास में एक सन्यासी विद्रोही भवानंद जो है इसको गाता है और देश प्रेमियों को आह्वान करता है कि अपनी मातृभूमि के लिए वो सोचे, उसके लिए कुर्बानी दे। बाद में 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया हेमचंद्र द्वारा, और 1896 में रविंद्रनाथ ने इसकी एक धुन बनाई और ये इसको कांग्रेस अधिवेशन में गाया भी था। 1901 में कलकत्ता में श्रीचरण दास ने भी इसे गाया था, और इस समय तक ये देखा जा रहा है कि भारत के विभिन्न हिस्सों के जो बड़े नेता हैं, जैसे तिलक वगैरह जो हैं, वो इसको एक मंत्र के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, देश प्रेम के एक मंत्र के रूप में। 1905 में बनारस में सरला देवी चौधरानी ने इसको गाया था, और जैसा मैंने कहा कि इसकी जो धुन जो है वो रविंद्रनाथ ने

0: 1896 में बनाई थी। ये बात कई जगह अन्य लोग भी कहते हैं कि यदुनाथ भट्टाचार्य थे जिन्होंने इसकी धुन बनाई थी, लेकिन जो भी हो ये तय है कि स्वदेशी आंदोलन के समय आते आते ये राष्ट्रीय एक मंत्र बन चुका था, जो अंग्रेज विरोधी राष्ट्रीय भावना थी उसका एक नारा बन चुका था। और इसका परिणाम ये होता है कि 1906 में जब बरिसाल में कांग्रेस की एक जुलूस निकली तो उसमें इसको बैन कर दिया गया कि आप वंदे मातरम स्लोगन नहीं दे सकते हैं। भीखाजी कामा ने 1907 में स्टुगार्ट में जब तिरंगा झंडा फहराया तो वहां भी वंदे मातरम जो है वो एक नारे के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। और इस तरह से हम देखते हैं कि 1906-07 तक आते आते वंदे मातरम जो है वो हमारे देश के जो लड़ने वाले थे, जो चाहते थे कि अंग्रेजों से लड़ाई की जाए और अपने देश के देशवासियों को स्वदेश प्रेम के लिए उत्प्रेरित करते हुए कुछ कहना चाहते हैं, उसका रैलिंग सॉन्ग बन गया। सब्यसाची भट्टाचार्य इतिहासकार ने एक किताब लिखी है इसके ऊपर, और उसमें उन्होंने दिखलाया है कि इस गीत मात्र से पूरे देश में किस तरह की भावना जो है उत्पन्न होने लगी थी। और बाद में धीरे धीरे इसको लेकर के कोई संदेह नहीं रहा कि वंदे मातरम जो है भारतीय राष्ट्रवादियों का, विशेषकर क्रांतिकारियों का एक स्लोगन बन गया था। रामप्रसाद बिस्मिल जब आत्मकथा लिखते हैं 1929 में तो वहां भी वंदे मातरम का उद्घोष होता है। और ये जो वंदे मातरम है यह निश्चित रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण गीत बना था। और इसको गाने का मतलब था कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय लोग एकजुट होकर अपनी राष्ट्रीय भावना को प्रस्तुत कर रहे हैं। 36-37 में यह तय हो गया कि इसका दो स्टैंजा जो है जिसमें कि देश प्रेम की बात की गई है उसको ही हम लोग राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार करेंगे। बाद में ये कहा गया कि हम राष्ट्रीय गान के रूप में रविन्द्रनाथ के जन गण मन अधिनायक जय हे को रखेंगे। और वंदे मातरम की चूंकि ख्याति थी, लोकप्रियता थी, इसलिए इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृति मिली। तो गान और गीत दोनों को बराबर मान्यता दी जाए, इसके लिए एक विशेष बात हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, जो जनवरी 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक वक्तव्य है और जिसका करतल ध्वनि से सबने स्वागत किया था कि दोनों ही रहेंगे, जनगण मन भी रहेगा और वंदे मातरम भी रहेगा, एक को गान कहा गया और दूसरे को गीत कहा गया, दोनों का स्टेटस बराबर का होगा। अगर हम इसके ऐतिहासिक महत्व को समझना चाहें तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वंदे मातरम ने ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा के रूप में काम किया था। जनगण मन को गा करके लोग शहीद नहीं हुए थे, फांसी पर नहीं चढ़े थे, ये बाद में एक सॉल्यूशन के रूप में, जातीय गान के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। दरअसल हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण गीत और नारा वंदे मातरम ही है, और इसी का जो इसकी इसी की जो स्पिरिट है उसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। पूरे देश में इस गान और इसकी स्पिरिट को याद किया जाना चाहिए। जब जब हम राष्ट्रीय आंदोलन की स्पिरिट की बात करेंगे तो वंदे मातरम की बात करनी ही होगी, और ये हमारा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय गीत है जो हमारी राष्ट्रीयता की भावना को स्पष्ट रूप से सामने रखता है, और इसके साथ हमारे क्रांतिकारी आंदोलन की स्मृतियां भी पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं।
1: धन्यवाद प्रोफेसर हितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: कैलाश खेर की आवाज में आप सुन रहे थे इस गाने को। कैलाश खेर ने ही गीत लिखा था, धुन बनाई थी कैलाश, परेश और नरेश ने। कार्यक्रम में लीजिए अब सुने मोहम्मद रफी की आवाज में इस गाने को। मदन मोहन ने संगीत दिया है, प्रेम धवन की रचना है।

सुरेश वाडकर के गाइस गीत को आप सुन रहे थे। गीत और संगीत के डी मन का था। इसके साथ ही विविध संगीत कार्यक्रम अब समाप्त तो होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 107 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र के माध्यम से। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अनुरोध।

कार्यक्रम अनुरोध सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके रेडियो दोस्त रघुवर के साव का प्यार भरा नमस्कार और आज के कार्यक्रम में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत नगीना फिल्म के इस गाने के साथ करते हैं जिसे गाया है मोहम्मद अजीज ने। संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं। इस गीत के लिए हमें ईमेल और पत्र लिख भेजा है दीवान रिहाना घृतलहरी ग्राम पोष चेरकापुर थाना तहसील पल्लारी जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, जीवनलाल रजक, निमी शिवम सतीश, मुकेश कुमार साहू, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सरोज शर्मा, शाइना शर्मा, निवान शर्मा, केवटापारा रायगढ़ से मालती निषाद, पार्वती निषाद, अनमोल निषाद, मीनू निषाद, श्री सिंगिर श्री महानदी से हवा पर्वत अंचल ग्राम बेलर गांव से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु अंकित देवांगन, गांधी चौक रोपर पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरग, जयतेक बीरग, मीका बीरग, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रेयांश ठाकुर, गौशालापारा रायगढ़ से विनोद कुमार गुप्ता, रीना, नेहा, यीशु और अंशु गुप्ता। आप सभी श्रोता साथियों की फरमाइश पर सुनते हैं इस गाने को।

की आवाज में सुनिए इस गाने को। गीतकार हैं समीर, धुन बनाई है आनंद मिलिंद ने। ईमेल करने वाले हमारे श्रोता साथी हैं महामाया चौक मेघापारा से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल, टेकलाल पटेल। गीत साथ में हमारे श्रोता साथी हैं वड़िंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। मलोड कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, लखविंद्र संधु, महावीर संधु, गुरचरण गरोवर, रमेश मिगलानी। ग्राम दरचूरा से ददुआ साहू, भूरी साहू, रेखा, मोतीलाल साहू। ग्राम बगपुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रोणामिका, उत्कर्ष नेताम। नर्मदा धाम सुरसुली से कैलाश यादव, सुरेश यादव, डिकेंद्र यादव, योगेश यादव। मैक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा, सुरेश कुमार सारथी, भाई कमलकांत सारथी, वीरेंद्र विजकांत सारथी बेमित्रा से। इंद्रानगर रायगढ़ से शेख अब्दुल सलीम, बेगम परवीन बानो, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम, आसिफ नईम राजा। लाल टंकी चौक रायगढ़ से चेतन दास, शीतल दास, सुशीला साहित्य, मनोज मुकेश और अंकित साहित्य।

गीत के बोल हैं रानी मलिक के, संगीत नदीम श्रवण ने दिया है, आवाजें अलका याग्निक कुमार सानू की हैं। फिल्म फूल और कांटे के इस गाने को सुनना चाहते हैं सालेहोना जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ से गजानंद निषाद, अनुराधा निषाद, आदित्य निषाद, यज्ञेश निषाद, डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामोरिया, अजय तुषार तामोरिया, डॉली बेबी पूजा तामोरिया, प्रभा देवी तामोरिया, किकिर मेटा बिलहारी पाटन से संतोष शर्मा, रुक्मणी शर्मा गुरामी डोंडी लोहारा बालोद से, पीयूष नेताम जोहत्री बाई, कोमल नेताम जुनवानी दुर्गा सुरित जुनवानी दुर्ग से सुरित रमेश साहू, ग्राम बन भगेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज नीलेश, कुमारी अंजलि सारवा, रामचंद माखीजा काफिर भाई, शंकरलाल माखीजा, राहुल कुमार माखीजा, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा और समस्त माखीजा परिवार बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, पटेल नगर मलोड पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया, रुआ बांधा शनिचरी बाजार भिलाई से सुशील जैन, कल्पना जैन, भैया सेया जैन, सौरभ जैन, सौर्य जैन, शुभम जैन, बाबा कुटी रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार चौहान, राजेश्वरी चौहान, उत्कर्ष चौहान, आशिक चौहान, सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मोरबा से भाई कारी राय कारी, श्रीमती मीना कारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जय श्री, पिंकी रिंकी रिक्की नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा, रोली सकरा से जयंत कुमार बैरागी।

ग्राम पहरा अहिवारा जिला दुर्ग से पोषणा बंछोर चंद्रकिरण प्रीति छाया बंछोर अरमरी खुर्द बटरेल दुर्ग से चुरामन लाल वार्डे जैनी वार्डे विवेक कुमार वार्डे नेहा वार्डे प्रभाकर जोंधले आरती जोंधले गौतम नगर जिला नांदेड़ से एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से कुमारी वंदना मराठा भाऊ मराठा गणेश दादा मराठा कार्तिक भाऊ मराठा परी संजना मराठा मालती चौधरी स्वाति प्रयाग चौधरी ललिता नारायण खर्चे ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही महराज जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से धरसिवा से छेदुलाल यादव श्रीमती सीता

यादव, अर्चना अरुणा यादव, अनुराधा अल्पना यादव दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से, छन्नूलाल यादव, अनुराग अभिषेक, अलका अनामिका बलदाव यादव कुमारी, रानू खुशी प्रवीण साहू सीएल यादव सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप कालका से, शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज साहिल लुधियाना पंजाब से, अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आदिबा कौर बिहारी कॉलोनी महासमुंद से, वलीउल्ला फकीर, डब्लूउल्ला फकीर, परवीन आसमा फकीर बुलंदशहर से, बद्रुवली अंसारी, फर्जुवली अंसारी, फर्जीवली अंसारी कायज पुण से, महेश हजारे, मिंताशु हजारे, आदित्य हजारे, इचलकरंजी महाराष्ट्र से, वसंत जी हजारे, प्रमोद हजारे। आप सभी श्रोता सुनना चाहते हैं पापा कहते हैं फिल्म के गाने को उदित नारायण की आवाज में। राजेश रोशन ने संगीत दिया है, गीत के बोल जावेद अख्तर के हैं।

श्रोताओं, उदित नारायण के इस गायक गीत के साथ ही अपने रेडियो दोस्त रघुवर गीत साहब को दीजिए आज के कार्यक्रम अनुरोध से अनुमति। नमस्कार। कार्यक्रम अनुरोध अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है 107.7 मेगाहर्ट्ज पर। 11 बजने वाले हैं। कुछ पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार होंगे।

FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। आज का हमारा प्रसारण अब संपन्न होता है। कल के कार्यक्रमों के साथ